रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजेपी के आरजे प्रदीप। और इस प्यारी सुबह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक नया सवेरा, नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम एक नए आयाम के साथ, नए काम के साथ करनी चाहिए। और आज भी बहुत सारी बातें होंगी काम से जुड़ी हुई, जी हाँ, करियर से जुड़ी हुई। सुनते रहे रेडियो केदार, बात हिमालय की।

0: नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीवा गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग के चेयरमैन हैं। आपने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MD और एम्स में आप फैकल्टी रहे हैं। नई दिल्ली के बाद आप सीधे UK पहुंचे और वहां आपने लंबे समय तक प्रशिक्षण हासिल किया, एक हाई लेवल का प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद आप अपने देश भारत पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता जी मानव भारती सोसाइटी देहरादून के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। सर, एक शॉर्ट जर्नी जानना चाहेंगे आपकी।
1: राजेश जी, ऐसा है कि ग्रेजुएशन सब लोग MBBS बनते हैं तो उसके बाद MD करते हैं, जो हमने भी किया मौलाना आजाद से। उसके बाद आई जॉइंट एम्स एज ए सीनियर रेजिडेंट, देन आई रियलाइज कि बहुत सारी स्पेशलिटी जो है अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जिसको जनरल, उसके कारण। और ये बहुत कॉमन बीमारियों के साथ लिंक्ड है, तो उसमें एक बीमारी और एक स्पेशलिटी जो हम लोग ने स्टार्ट किया, मैं इससे, इस बीमारी से और इस तरह के विभाग से जुड़ा हुआ 94 से।
0: yes.
1: तो 94 में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, पहले ये क्या होता है इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी में जितनी ऑर्गन है सब वो उसको कंट्रोल की जाती है एक तरह की हार्मोन्स या एक तरह के सब्सटेंस से, जो इम्यून को आदर स्टिमुलेट करते हैं या सप्रेस करते हैं। ये चीज़ जो है ये बैलेंस्ड रहती है नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस आपकी, ये डिसरेगुलेट हो जाती है। तो उसमें इम्यून सेल्स जो हो गया वो हाइपर एक्टिव हो गया। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताएं कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, बहुत सारे कॉमन डिजीजेज हैं, हम उस पर आएंगे जैसे जैसे चर्चा होगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन आम आदमी इसको गठिया जानता है
0: जी,
1: हमने ऑटोइम्यून डिजीज बताया। जब इसमें इम्यून सेल हाइपर एक्टिव हो गए वो बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करते हैं जी। उसमें आपका लंग्स भी आएगा, आपका हार्ट भी आएगा, आई भी आएगा, इसमें मुंह में भी सूखापन, आपके किडनी की इन्वॉल्वमेंट आती है, सारे सिस्टम के। उसी में एक सिस्टम जो है वो है मस्कुलोस्केलेटन, जो अर्थराइटिस, लेकिन मरीज को तो सिर्फ पेन हो रहा है इसलिए आपके पास आ रहा है
0: जी,
1: तो इसलिए वो गठिया समझ के आपके पास आ रहा है। ये आपकी जो सोचने का ढंग था ये 90s में, तो सारे जो अर्थराइटिस के मरीज होते थे वो ऑर्थोपेडिशियन, जनरल फिजिशियंस, पैरामेडिक्स, बहुत सारे इस तरह की उसमें चले जाते थे और ये कंसेप्ट था ये लाइलाज है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। उनको तो अदर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ही पता नहीं कि हार्ट, ये डिजीज़ हुआ तो इसमें हार्ट डिजीज़ जल्दी आएगी, इसमें लंग सिकुड़ने लगेगा। सो ये सारी जो इंटरेस्टिंग ये पार्ट ऑफ मेडिसिन आ गई, तब ये हुआ कि इसको डेवलप किया जाए। तो हमने जब सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म किया उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से, देन हमने बोला कि बाहर चले जाना चाहिए, कुछ नए थॉट्स आने चाहिए, नहीं तो वो डेवलप नहीं कर पाते। तो हम 4-5 साल बाहर रहे, उसके बाद एम्स में फिर फैकल्टी की तरह हमने ज्वाइन किया एंड वी डेवलप ए डिपार्टमेंट कॉल क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। उसमें हमारे 2-3 कलीग और थे, हमने इसको प्रमोट किया। आप कोई भी डिजीज़ लेंगे इसमें इम्यून मैकेनिज्म सबकी है,
0: सबकी है बिल्कुल।
1: अब सिंपल सा आप देख ले मलेरिया
0: जी,
1: मलेरिया में फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मलेरिया का इफेक्ट ऑटोइम्यून के कारण और दूसरे सिस्टम में आने लगता है। टाइफाइड आप ले लीजिए, टाइफाइड में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आके वो आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशन है इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। अब उसको आप रिकॉग्नाइज करनी है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए और हमारे दर्शक को समझाने के लिए रहेगा कोविड।
2: जी,
1: कोविड एक इन्फेक्शन था।
2: जी,
1: वायरल इन्फेक्शंस ये हम जानते थे। जब ये वायरस बॉडी में गया वो आपको डैमेज किया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने रिएक्ट किया, वो अपना इम्यून सिस्टम को हाइपर कर दिया। तो जो वायरस था वो आपके बॉडी से 5-7 दिन में बाहर चला गया, लेकिन जो हाइपर रह गया, हाइपर वो इम्यून सिस्टम सेल्स, वो आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगे। जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगी, उसके कारण सांस में तकलीफ आने लगी। ये वायरस तो अपना काम करके इनिशिएट करके चला गया और हमारे को ऑटोइम्यून, तो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाएंगे। स्टार्ट वायरस से हुआ, ड्रग से हुआ, किसी चीज़ से होगा, लेकिन ये रूमेटॉइड भी उसी टाइप से है। लूपस एसएलई, बहुत लोग सफ़र करते हैं एसएलई, स्क्लेरोडर्मा है, मायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, नर्व्स की डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लूपस किडनी की, लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं। अब इसको अप्रोच करने का दो तरीका, या तो जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व है उसके डॉक्टर देखें, जो करते रहे वो इजी है। सांस फूल रही है, हम सांस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको क्या पता है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब सांस के डॉक्टर देखते हैं कि सांस के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यून मैकेनिज्म्स मेडिएटर, उसके टेस्ट काफ़ी डेवलप हो गए। अब थोड़ी सी टेस्ट में और भी नई नई चीज़ टेस्ट आती रहती जो रिफाइंड करते रहते हैं डिजीज़ को, हम उसको क्लासीफाई करना शुरू किया। सो ये आपकी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी वाली बात। अब रूमेटोलॉजी में क्यों इसको जोड़ा गया? रूमेटोलॉजी में मतलब सिंपल सा कि रूमेटिक आपको पेन हो रहा
2: है।
1: तो जितने भी सिस्टम हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या आएगा?
2: जॉइंट्स पेन।
1: तो आपको ये समझना है कि अर्थराइटिस सब एक तरह का नहीं है, 100 से ज़्यादा तरह के अर्थराइटिस होते हैं। अब उसमें कैसे हम कौन अर्थराइटिस है ये पता करने के लिए ये साइंस को डेवलप किया गया।
2: जी,
1: अब ये जो डिजीज़ है इज़ वेरी कॉमन, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज़ हमने बोला आपको, हम ऑस्टियो की बात नहीं कर रहे हैं जो एज के साथ है, वो वीएटीआर के।
2: जी,
1: रूमेटॉइड, अब देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस मानते हैं कि इंडिया में 1% लोग को होता है। 1% का मतलब आप देख लीजिए, आपके पास 140 करोड़ है
2: की पॉपुलेशन,
1: तो 1.4 करोड़।
2: जी,
1: आप इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। मैं इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन भी रन करता था, वहाँ पर हमने जब रजिस्टर्ड, अब इसकी डीएम एंड सारी स्पेशलिटी शुरू हो गई है। इनफैक्ट हम मेदांता में हम उनको टीचिंग भी करते हैं, इस नॉट मल्ली की पेशेंट देखते हैं। सो एवरी ईयर वी टेक 2 डीएम, डीएनबी बोलते हैं। तो हमारे पास एट एनी गिवन टाइम 6 डीएनबी स्टूडेंट जिनको हम ट्रेन कर देते हैं सुपर स्पेशलिटी। हम आपकी फिर रूमेटॉइड बढ़ा के एक बातें और बता दें, 1.4 करोड़ कौन देखेगा?
2: बड़ी संख्या है,
1: बहुत बड़ी संख्या, और ये आपको 3-6 महीने पर देखते रहने का है। तो साल में कितनी बार हुआ देख लीजिए, आपके पास जो ट्रेंड रूमेटोलॉजिस्ट एट द मोमेंट इंडिया में है मुश्किल से 3,000 भी नहीं है।
2: तो एक के हिसाब से तो फिर बड़ी संख्या बैठ,
1: समझ ली
2: जी, जी।
1: आप बोलेंगे कि मेरे पास दिखाया, अब हमारे पास हालांकि हम वेटिंग लिस्ट नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत सारे के महीने भर की है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जब आपने इस कोर्स को किया था, इस फील्ड में आप आए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या वजह रही, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप इस फील्ड में आए?
1: मेडिसिन में चैलेंज सभी डॉक्टर चाहते हैं।
2: जी,
1: जब मल्टी सिस्टम होता है ना तो चैलेंज बढ़ जाती है।
2: जी,
1: और आप एक तरह से एंटीबायोटिक देना वो सब लोग कर लेता है, आपकी इस फील्ड में आने के बाद डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है कि ये इम्यून रिएक्शंस आपके जो लिम्फोसाइट से बी सेल की हाइपर एक्टिविटी से हो रही है। अब हमने दवा बनाया कि बी सेल की हाइपर एक्टिविटी कम कर दें, पहले लोगों का हाथ आपने देखा होगा ऐसे करके चले।
2: जी, बिल्कुल,
1: आप यदि ठीक टाइम पर हमारे पास आएंगे हम गारंटी देते हैं होल लाइफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डैमेज हो गया उसको नहीं, तो ये चैलेंज। अब जब रूमटॉइड हमने देखा उनके चेस्ट पर हमने स्टेथोस्कोप रखा, उसमें क्रेपिटेशन आ रहे जो मतलब कि थोड़ी सी लंग्स में सिकुड़न की बात, और ये जो सिकुड़न है जिसमें वो सांस फूल रही है वो सोच रहे हैं कि दम्मे से चल रही है, नो, ये आपकी गठिया से है। अब इसको हम गठिया ठीक कर देते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस सही कर देते हैं, लंग्स भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और गठिया भी, हार्ट की भी साथ में प्रॉब्लम आए वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिसिन में वो आपको मोटिवेट करती है।
2: अक्सर डॉक्टर साहब व्यवहारिक रूप से देखा जाए, आम व्यक्ति की हम बात करते हैं, दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द है, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पेन किलर ले लेते हैं, तो उसका कितना खराब प्रभाव बॉडी पे पड़ता है?
1: देखिए ये हमारी देश की दुर्भाग्यती है कि भाई आपकी ये सब मेडिसिन ना ओवर द काउंटर आप खरीद लेते हैं। मेडिसिन को जो हम अपने टर्म में वेरी सिंपल वे में डिफाइन करें, मेडिसिन को इज़ ए यूजफुल पॉइजन। तो ये यूज़फुल उस समय तक रहेगा जब तक किसी क्लिनिशियन जिसको नॉलेज है वो प्रिस्क्राइब ना
2: प्रिस्क्राइब।
1: यदि आप जाके उनसे ले लेते हैं जो कॉमन पेन किलर, चलिए आपकी आती है इटरिकॉक्स, निकॉक्सिया एक ब्रांड है या वॉवरन वेरी कॉमन ब्रांड है, दे कैन किल यू ऑल्सो।
2: अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपने कहा कि ये यूज़फुल पॉइजन है। अक्सर एक स्टोरी में पढ़ रहा था तो उस स्टोरी में ये था कि वन पील टू मैनी उसका टाइटल था, जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि एक एज के बाद शरीर में विभिन्न रोगों में विभिन्न अंगों में रोग आ जाते हैं, कार्डिक है, लंग्स है, और भी तरह के रोग, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, साल्ट लगभग लगभग सेम होते हैं कई दवाइयों के, तो एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य रोगी को क्या करना चाहिए?
1: ये खास करके डेंजरस होता है एल्डरली पॉपुलेशन में, इसको हम अपने टर्म में बोलते हैं पॉलीफार्मेसी।
2: जी, पॉलीफार्मेसी
1: उसके एक डिफिनीशन है। सो ये जो भी पेशेंट हैं, आपको जो भी मेडिसिन दी जा रही है आपको एक फिजिशियन के पास रहना है, हु कैन सी द कार्डियोलॉजी में क्या मेडिसिन चल रही है, यदि आपको किडनी की है, डायबिटी, सब वो करके एक मेन प्रिस्क्रिप्शन बनाए। हमारे यहाँ जो है जो डॉक्टर चाहिए हमारे को फॉर जनरल पॉपुलेशन इज जनरल मेडिसिन वाले, लेकिन हमारे को हार्ड लगता है हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट अपने मेडिसिन के साथ कैल्शियम, विटामिन डी, अदर मल्टी विटामिन, अच्छा यहाँ पर भी दर्द है आप ये भी ले लो, अब वो दर्द वाले दुकान पर गए, इससे क्या हो गया बहुत सारी बात, ऑल दीज ड्रग जितने आप नंबर करेंगे इंक्रीज वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी साइड इफेक्ट आती है। इसलिए जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन जनरल फिजिशियन लिखता है उनको अपनी डिजीज जिसके लिए वो गया है साथ में उनको लिखनी चाहिए कि इनको और कौन सी बीमारी है।
2: जी बिल्कुल,
1: अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हम पेन किलर नॉन स्टॉप नहीं दे सकते, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं दे सकते, जिसको किडनी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो कंट्रा इंडिकेटर।
2: क्या आपको लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस है?
1: ये डेवलप हो रही है, लेकिन दो चीज़ें इसमें हैं, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को आगे आना होता है। वेरी सिंपल, आपके पास पेशेंट बहुत हैं और डॉक्टर के पास सो कॉल्ड टाइम नहीं है। अब जैसे मैं देखिए यूके में जब प्रैक्टिस करता था होल डे में सिर्फ 5 मरीज देखता था, अब यहाँ पर कोई बिलीव तो नहीं करेगा कि 5, फिर आपकी घर कैसे चलेगी, रोटी कैसे आएगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपकी टाइम जो है वो कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे काम हुआ आप कटिंग द कॉर्नर करने लगते हो। अब यहाँ पर जो भी एक कोई अच्छे प्रैक्टिशनर आप देखो दिन भर में वो 40 मरीज देख रहे हैं कम से कम, उससे भी ज़्यादा देखते हैं।
2: जी,
1: 40 मरीज को 8 घंटे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए उस मरीज पर कितना टाइम आपने दिया।
2: बिल्कुल, उसी सवाल पे मैं अभी आगे आऊँगा।
1: तो इसमें क्या है, कि जो एक दोनों साइड में प्रॉब्लम है, पेशेंट साइड में क्या प्रॉब्लम है कि दे गो फॉर द फेमस डॉक्टर, अब सब लोग फेमस डॉक्टर के पास जाएंगे तो भीड़ तो रहेगी ना, वो रात के 2 बजे तक मरीज देख रहा है, वो आपको 2 मिनट दे रहा है। हमको वो डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको वो डॉक्टर चाहिए जो आपकी बात सुन रहा है, 10 मिनट टाइम दिया, उसके बाद वो भी ब्लेम इज कि वो भी आपको ठीक से ट्रीट करेगा, लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश डॉक्टर है वो तो फेमस हो गए हैं, इसलिए गांव से भी लोग आएंगे कि फलना के यहाँ जाने का है जी। तो वो वहाँ पर रात के 2 बजे का टाइम लेके लगाएंगे, वो बेचारा डॉक्टर सोते हुए, वो भी आई एम नॉट सेइंग कि ही इज डूइंग रॉन्ग, लेकिन उसे लगता है इतने मरीज हैं हम कुछ भी भला कर सकते हैं, हम करें
2: जी,
1: लेकिन टाइम तो कम होता चला गया।
2: इस समय डॉक्टर्स की कमी है, अर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है, और आप जैसा कि आपने बताया कि यूके में 5 मरीज पर डे, पर यहाँ तो लिस्ट वेटिंग बहुत ज़्यादा है,
1: तो इसलिए तो हम यहाँ पर थोड़े से इनोवेट होते हैं, वहाँ पर एक मरीज में सब कुछ करनी होती है, आधा घंटे का टाइम उनको देना होता है, सारा कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मरीज़ की हम उतनी डिटेल में नहीं लिख रहे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं, सेकंड है वो रिकॉर्ड हम पेशेंट को दे देते हैं जी। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट वो कुछ समय के बाद घर शिफ्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कहीं गया, बाढ़ आ गई, रिकॉर्ड गई, ये प्रॉब्लम है। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हमने आपको जो रिकॉर्ड दिया ओपीडी में उसकी एक कॉपी हमने अपने कंप्यूटर पर, इसको हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाला, वो आपका खाली UHID नंबर रहे, हम उससे निकाल के कि आपके पहले के क्या रहे, वो ये सिस्टम जो है वो कॉर्पोरेट में है, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते।
2: जैसा कि आपने अभी बताया, ये मैं बहुत पहले भी पढ़ा था कि मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटलाइज कर देना, जैसे कॉर्पोरेट में जैसा आप बता रहे हैं वेदांता में होता है सर ये सब चीज़, लेकिन प्राइवेट में और जगह जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंने नहीं देखा है।
1: देखिए दो सिस्टम है, जो इन पेशेंट है उसके रिकॉर्ड बाय लॉ हमें रखनी होती है, तो इन पेशेंट एडमिट हुए आपके रिकॉर्ड रहेगी, उसके एक 10 साल का है 5, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती पेपर रिकॉर्ड के लिए, डिजिटलाइज कर देने पर आपको बढ़ गया। हम जो बातें कर रहे हैं वो OPD रिकॉर्ड की
2: जी, OPD रिकॉर्ड
1: जो कि आप मेजॉरिटी का आप देखेंगे वो लिख के आते हैं, उस पर 4 चीज़ खाली दवा लिखी हुई है और साइन करके उन्होंने दे दिया, डॉक्टर ने भी नहीं रखा है
2: जी।
1: इमरजेंसी में भी वो मरीज फ़ोन करता है डॉक्टर को, उसे आइडिया नहीं, अनलेस कि वो उनके एरिया का रेगुलर आ रहा हो, क्योंकि वो ट्रेस नहीं कर सकता ना कि हम इसको क्या कर रहे थे। तो ये सिस्टम अब्रॉड बहुत सॉलिड है, वो आप कॉल करेंगे, हमारा हम करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं जो इमरजेंसी में, क्योंकि हमारे मरीज़ ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है इतने बजे आपको, तब तक हमारा स्टाफ उनका सारा रिकॉर्ड निकाल के हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है।
2: क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स की एक लंबी लाइन है, डॉक्टर के पास समय नहीं है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मेडिकल हिस्ट्री भी डिजिटलाइज हो जाए और एक क्लिक पर पता चल जाए कि पेशेंट का अब क्या हाल है?
1: ये बहुत कुछ शुरू होने जा रहा है कि आपकी जो कार्ड आती है ना, कार्ड में आपको हमने दिया और उसको उसमें अपलोड करके आपको कार्ड पकड़ा दिया
2: जी।
1: हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि आपको हम 80% तो इंडिया को विलेज में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अमाउंट अभी भी 60 के आसपास है।
2: बिल्कुल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल है।
1: अब वो जब आते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच डॉक्टर की है। आपने जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें 1 मिनट भी आप एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, सेक्रेटरी रख लीजिए, और वो कुछ नहीं आता इनका नंबर और स्कैन करके ही आप सिस्टम पर डाल लीजिए, कम से कम खोल के। गवर्नमेंट ये फोर्स कर रही है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग कि जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो टाइप होना चाहिए। अभी आपने सवाल नहीं पूछा, नहीं तो आप नेक्स्ट पूछने वाले हैं
2: जी, जी, जी।
1: कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो तो कोई पढ़ नहीं पाता।
2: पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो उसमें बहुत मिस्टेक है। अंडर दिस डॉक्टर शुड आल्सो बी नोइंग, दे नो, एवरीबॉडी नोज, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड कि भाई यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग, दिस इज नॉट कि जी आपके गलती से भाई 2000 रुपये नुकसान हुआ, 1 लाख रुपये नुकसान, दिस इज पेशेंट वी आर टॉकिंग।
2: सबसे बड़ा सवाल तो जीवन का है रुक साहब।
1: हाँ, इसलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज आपकी जो आ रही है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट,
2: बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है।
1: सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया है, सिस्टम, गवर्नमेंट इंडिया इज डूइंग ग्रेट जॉब, वनली थिंग है कि इम्प्लीमेंट करने में, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर का शहर में ज़्यादा है, गांव में कमी, तो उसके बाद हमको लैब स्टैंडर्डाइज करना है, वो सबका उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, NABH करके ना कोई अच्छे लैब को, बिना उसका वो करते नहीं है,
2: नहीं
1: वो देख के उनकी ऑडिट होती रहती है। सो दीज थिंग्स की अब किसी की हीमोग्लोबिन एक जगह से आपके सिंपल 11 आई, एक जगह से 5 आ रही है, वो
2: डिफरेंस आता है उसमें,
1: तो अब आपका अब डॉक्टर बेचारा परेशान कि अब किसकी बातें माने क्लिनिकल कितना भी कर ले, लेकिन लैब में दिख रहा है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते।
2: अच्छा डॉक्टर, फिर से हम गठिया पर आते हैं। अक्सर जोड़ों में हल्का सा भी दर्द होता है तो एक लोग सामान्य तौर पे कहते हैं गठिया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसे ही कुछ कहते हैं। फिर कहते हैं कि साहब प्रोटीन बढ़ गया है आपका, अरहर की दाल मत खाइए। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि हल्का सा दर्द होने पर भी क्या गठिया मान लिया जाता है या जोड़ों का दर्द?
1: देखिए, कोई भी जॉइंट्स पेन हुआ अर्थराइटिस कर लें, दैट्स अ गठिया, वेरी वेग वर्ड में। गठिया बहुत तरह की है, यूरिक एसिड की गठिया इज डिफरेंट, उसमें ये सारी बातें होती हैं, उसको हम गाउट बोलते हैं, वो एक तरह की गठिया
2: होती है,
1: ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है उसका। लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड रेज रहने से और थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ गाउट बोले, नहीं
2: जी,
1: वो नहीं होता। यूरिक एसिड आपके नॉर्मल बॉडी में वो आपका बढ़ता है एज के साथ, लेडीज में कम रहेगी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, मेनोपॉज के पहले वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का काम, मेल में थोड़ा ज़्यादा, जो इंटेलिजेंट मेल हैं उसमें यूरिक एसिड थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम यू बोलते आप इंटेलिजेंट हैं 7.6 यूरिक एसिड को भूल जाइए। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रखते हैं, जो मोटे हैं, डायबिटीज़ कार्डी, उसमें यूरिक एसिड वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जनरल बॉडी की कंडीशन इज नॉट गुड, किडनी इन्वॉल्वमेंट आने लगी है, यूरिक एसिड ऊपर होने लगा है। तो सिर्फ यूरिक एसिड के बेसिस पर हम गठिया गॉट नहीं बोलते,
2: नहीं कह सकते। सर, आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें?
1: भाई मैं मुकेश का फैन हूँ
2: सर,
1: ठीक है ना, हमारे टाइम में मुकेश का, उनके सारे गीत अच्छे हैं, लेकिन गीत में एक पूर्व पश्चिम का गाना, ठीक है, यदि आपके पास हो
2: जी सर,
1: तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
2: तो हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है पूरा पश्चिम फिल्म का एक गीत,

0: एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो केदार में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, 7 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ रहे। उसमें मैं पढ़ रहा था कि जुवेनाइल टीनेजर्स चिल्ड्रन, जबकि हम लोगों की समझ में अभी तक सामान्य तौर पर यह है कि ये एक एज की बीमारी है, ये एक एज का रोग है, तो क्या बच्चों को भी और जो जुवेनाइल्स हैं उनको भी रोग होता है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दूं कि ये वेबसाइट में मेंटेन नहीं करता तो वो कौन किसने बनाया, लेकिन ये बात हम सब मीटिंग में बोलते हैं
0: जी।
1: जो अर्थराइटिस और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज, वो किसी एज को अफेक्ट कर सकता है, उसमें जॉइंट्स भी जैसे हमने बताया। तो आपकी जो 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा पैदा लिया, उसके बाद उसको नियोनेटल बोलते हैं, उनको भी अर्थराइटिस हो सकती है। क्या कमी है कि उसको पकड़ना
0: जी, बिल्कुल।
1: यदि आप पकड़ लेते हैं बच्चों में, हम जो जुवेनाइल बोलते हैं कि वो 16 साल के कम बच्चा
0: जी,
1: क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, उनका ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब कुछ वो देख के चलना होता है। उनका अर्थराइटिस जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में हम क्लब करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हैं। सो इतनी अब डेवलप हो गई कि इसको पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजी के पास भेजते हैं,
0: बच्चों का जो है,
1: बच्चों का ही वो 16 साल से कम करते हैं। देखिए, अर्थराइटिस को हम डिवाइड करें ना, जो आम धारणा जो आपने बताया कि वो ओल्ड एज में, वो उम्र के साथ वियर टियर के कारण, घिसने के कारण, इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कॉमनली आपका घुटने में, बैक में आपको, क्योंकि आपका घुटना आपको 50 साल 60 साल काम किया, रगड़ खरा, मिसयूज़ आपने किया, जमीन पर पालथी मार के अभी तक बैठ रहे हैं तो उठेंगे तो थोड़ा लगेगा
0: जी।
1: तो ये डिफरेंट है। जो ऑटोइम्यून के कारण है उसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या है कि जॉइंट्स में अचानक सूजन आ जाती है, आप जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे, हाथ रख के देखेंगे वो गर्म है, जैसे कि जोड़ में आग लगी हुई है, ठीक है, सुबह उठेंगे एकदम जाम हो गया है, थोड़ा चलेंगे चलने लग जाता है। उसकी बहुत तरह की वेरियंट है, उसको पैटर्न देख के हम रिकोगनाइज करते हैं। बच्चों में जो हो हमने क्लासिफाई खाली कर दिया कि जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो यदि किसी को जोड़ों में, एक जोड़ या दो जोड़ बच्चों में सूजन आ गई है, मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करें। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम बच्चे को उसी तरह से नॉर्मल रखेंगे, लेकिन आपको इनिशियल फेज में आना होगा। यदि आप डैमेज हो गया तो फिर तो डैमेज हो गया।
0: आपके पास जब पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, तो किस स्थिति में आते हैं, क्या?
1: सभी तरह के आते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए लोगों को अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो गांव से भी आते हैं वो आपके नाम सुन के आते हैं कि आपने फलना को ठीक कर दिया, आप मेरे को भी कीजिए। वो थोड़ा लेट हो जाता है, जो डिफॉर्मिटी हो गया जॉइंट्स उसमें, लेकिन उसमें भी काफ़ी फर्क होगा। ध्यान रखेंगे, हमने खाली अर्थराइटिस नहीं ठीक करनी है, दूसरे सिस्टम को भी ठीक
0: करना है,
1: तो उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि डैमेज हो गया, हम 100% बैक नहीं, लेकिन कंट्रोल फिर भी कर लेंगे कि डैमेज का जो प्रोसेस है वो वहाँ रुक जाए और डैमेज ना हो।
0: जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे 7 बातें आपने बताई हैं, जुवेनाइल की मैं बात कर रहा हूँ लगातार और चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कितनी अवेयरनेस है बच्चों को लेकर और किशोरों को लेकर? सब
1: हम आपके स्टूडियो में स्कूल में बैठे हैं
0: जी,
1: हम स्कूल में कैंप लगवाते हैं, उसमें टॉक देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब प्लस मदर एंड फादर, आजकल तो बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, एंड गुड थिंग अबाउट द सोशल मीडिया कि ये सारी चीज़ सबके पास है,
0: सबके पास है।
1: ओनली थिंग ये ओरिएंटेशन अपने बच्चों में देखनी कि यदि वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा रहा, इसका कि चोट लग गया, ये सब नहीं होता। अब देखें, स्कूल जाने से कतरा रहा है, वो यदि घुटने में चल रहा है वो चल नहीं पाएगा, सुबह उठेगा हिल नहीं पाएगा। तो आपका काम है, क्योंकि बच्चे आप पर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो आपको लेके नज़दीक के सेंटर में फिजिशियन को नहीं है, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट कम होंगे आपके शहर में, तो ऑर्थोपेडिशियन वो गाइड कर देंगे कि भाई आप इनको आगे दिखाओ, क्योंकि दवा इसमें थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, लेकिन दवा सस्ती भी है महंगी भी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचने कि ये दवा महंगी है, दवा महंगी की बता दें कि इसमें कुछ दवा हम लगाते हैं जिसकी एक डोज की कीमत 1,00,000 रुपये है, और बहुत सारी दवा है जिसकी कि 2 रुपये है
0: जी। बहुत
1: तो वो हाँ, तो वो डिपेंड करता है क्या पेशेंट्स अफोर्ड कर सकता है ये, क्योंकि जितनी जितनी नई दवा आती जाएगी ना कॉस्ट ऊपर, फिर जैसे यूज होता है धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो 1,00,000 रुपये वाली दवा अब आपको 30,000 में मिलने लगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 10,000 में मिलने लगे, तो ये सारे वैरिड है, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट लिखें तभी इसको यूज करनी है।
0: डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि जो कमर दर्द है, कमर में जो दर्द होता है वो बहुत आम है, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला दर्द सामान्य पीठ दर्द से कैसे अलग होता है?
1: वेरी गुड, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो इसमें फीचर्स जो हमने बताया, सुबह उठेंगे पूरा जाम रहेगा
0: जी,
1: ठीक है ना, और उसके अलावा मूवमेंट करने में दिक्कत है, जो कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद नहाया आपने तब शुरू होता है, बैक पेन बहुत कॉमन है, वो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कम होता है। सेकंड जो है इसके साथ कुछ फीचर्स आते हैं, ये एक सेट पैटर्न अब जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, बैक का आपने बताया वो बटक जॉइंट्स में कॉमनली होता है, उसके बाद दूसरे घुटने वगैरह में, एंकल में, ये सब में भी आता है, वो आपके कॉमन जॉइंट्स में एंकल में सूजन नहीं आएगी। तीसरा है इसकी, जैसे हमने बताया दूसरे सिस्टम में किसी को बार बार आँख में लालीपन आ रहा है
0: जी,
1: ये ऑटोमिन वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, उसको HLA-B27 से हम कोरिलेट करते हैं, उसके ट्रीटमेंट आप आए हम आपको 100% कंट्रोल रखेंगे। इसकी जो अनदर थिंग जो हम इसको देखते हैं, ये कम एज में होता है, एज इज नो बार, ध्यान रखेंगे ये 16 साल 18 साल 20 यंग बच्चों में होता है, एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी सी फैमिली में रन करती है, यदि आपके मामा चाचा को है आपको होने का थोड़ा चांस है। इसमें एक जीन मार्कर हम लोग देखते हैं, इसको HLA-B27 बोलते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखनी है कि HLA-B27 सबको पॉजिटिव हो इसका मतलब अर्थराइटिस

0: तमाम पेशेंट से आप मिलते रहे, क्या लगता है कि जो पेशेंट हैं बीच में छोड़ भी देते हैं बहुत सारे, तो वो नंबर कितना उसका परसेंटेज होगा डॉक्टर साहब?
1: ये डिपेंड करती है आपकी काउंसलिंग में। देखो इंडिया, आप कुछ ही बोले, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी रिसोर्स लिमिटेड है। आपके गांव के मरीज पैसे लगते हैं, ठीक है ना, कुछ भी है। अब बहुत जगह आपको नॉर्मल अपने फैमिली लाइफ के लीड करने के पैसे नहीं है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाता है वो लेडीज़ हो जाती है, क्योंकि मेल को सब देखते हैं ना कि अर्न करेंगे, यदि ये घर में बैठने लगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो आपको देखनी है, उनको इनक्रेज करनी, उनकी फॉलोअप करनी है। हम अपने पास जो इस तरह के क्रिटिकल और रेयर डिजीज़ वाले मरीज जो देखते हैं उसकी लिस्ट होती है, यदि वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट भूल जाता है उसको कॉल की जाती है, लेकिन ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपकी काउंसलिंग, जब आपने पहली बार देखा है उसको कैसे किया है, और ये डॉक्टर को वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसको देखा और महंगी दवा 1 लाख रुपए वाली दे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये वाली दवा से भी वैसे ही एक्टिवली ट्रीट कर लेंगे। तो ये आपको देख के, बहुत से लोग इंडिया में, अब थोड़े लोग रिच हैं, वो आपके इंटरनेट से पढ़ के आते हैं कि मेरे को बायोलॉजिक्स चाहिए, वो महंगा से फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे, वो ठीक है। तो सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है और सबकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसमें कंप्लायंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम क्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये कंप्लायंस, जो आपने मुद्दा उठाया ना कि कंप्लायंस मतलब कि वो दवा टाइम पर नहीं ले रहे हैं, आना छोड़ दिया, दैट्स द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिसिन तो बहुत सिंपल सी भी हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, वो उतना नहीं। मरीज़ को, यदि कोई मरीज सुन रहे हो, यदि आपको लगता है फाइनेंस के कारण हम ये ट्रीटमेंट परस्यू नहीं करें, टॉक टू योर डॉक्टर, वो कम कर देंगे, दूसरी दवा दे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप छोड़ देंगे बाद में,
0: जैसे आप तो फॉलोअप कर लेते हैं पेशेंट के साथ, की बातचीत हो जाती है कि भाई नहीं आ रहे हो आप, कॉल कर लिया। लेकिन अधिसंख्यक लोग जो है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं, तो वहां तो फॉलोअप भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास आए, पर्चा लिखा, गए, फिर इसके बाद पेशेंट और डॉक्टर का संबंध खत्म।
1: इसलिए राजेश जी, आपके चैनल से हम चाहते हैं कि आप लाइव शो उनसे मेरे को कनेक्ट कराएं। हम करते रहे ऑल इंडिया रेडियो पर, उसमें क्या है, वो कनेक्ट होते हैं, वो सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट की कमी है सब लोग, और जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं बड़े शहर में हैं या 2 टायर सिटी या 3 टायर उसके नीचे नहीं होते हैं, तो उनसे खाली एक बार वो कनेक्ट हो जाए ना, दे विल टेक केयर ऑफ। तो आप जब लाइव शो कराते हैं, आप अपने गांव के लोगों को
0: टेलीमेडिसिन कितना सक्सेस है डॉक्टर साहब?
1: वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, तो आपके, क्योंकि आपका जो माध्यम है ये बहुत लोग को जाएगा जी। हमारी जो टेलीमेडिसिन है 1-to-1, तो वो जो अपेयर होके मेरे से नहीं आ सकते हैं, तो वी डू वीडियो, दैट्स ए टेलीमेडिसिन हम करते हैं, लेकिन 1-to-1
0: बिल्कुल।
1: वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान रखें, 1% ऑफ द,
0: दूसरा
1: आपको कैलकुलेशन बता दिया
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड है कि हम आपके माध्यम से और लोगों की तरफ पहुंचे।
0: डॉक्टर साहब, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली और फिर यूके का सिलीगुड़ी पूरा, वहाँ की अलग व्यवस्था है, किस तरह से देखते हैं सफ़र को?
1: बहुत डिफरेंट है। मौलाना आज़ाद से हमने MD किया, लेकिन हम उसके बाद एम्स में ही थ्रू आउट रहे हैं। हमने एम्स में 1994 में ज्वाइन किया था, सीनियर रेजिडेंसी, पुल ऑफिसर, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि हम 97 में हम यूके चले गए, एंड 2001 में आके हमने फिर एम्स में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। उसके बिफोर हम ज्वाइनिंग मेदांता जब ज्वाइन किया, उसके पहले हम एम्स में थे, वहाँ से छोड़ के इधर हम चले हैं। वहाँ पर ना पेशेंट का लोड नहीं है, पेशेंट आपकी बातें समझते हैं, केयर करते हैं। सेकंड थिंग है कि हेल्थ केयर में एक पिरामिड का जोर होता है, सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता, यू नीड टू हैव ए पैरामेडिक्स
0: बिल्कुल,
1: यू नीड टू हैव ए कॉन्स

0: काउंसलर, ये सब वहाँ पर वेल डेवलप्ड है। अब हमारे को फिजियो को भेजने का है, वो हम कर दिया, फिजियो घर जाके आपकी एक्सरसाइज कराता है, ये यहाँ पर नहीं हो पाता। यदि आपने फिजियो को रेफर किया तो वो कि ये तो ऐसे ऐसे बताया, नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये लोग ऑर्थोटिस्ट हैं, ये सारे वहाँ पर। प्लस यूके में एवरीथिंग इज अंडर एनएचएस, सो पेशेंट इज नॉट पेइंग एनीथिंग। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में मरीज जाना पसंद नहीं करते हैं, तो प्राइवेट। तो अब कॉस्ट इज ए इशू। तो यदि आप मुझे बोलेंगे कि वहाँ का और यहाँ का, एक ही लाइन में मैं बोलता हूँ, मैं जब तक वहाँ था हम उसको बोलते थे वर्किंग हॉलीडे। मैं हॉलीडे पर हूँ, काम भी कर रहा हूँ,
1: काम भी कर रहा हूँ, वर्किंग हॉलीडे।
0: और यहाँ पर जब मैं हूँ, मैं घर छोड़ता हूँ 8:30 में, आज शाम को 6:30-7 बजे
1: घर पहुँचता
0: हूँ, जबकि हमारी टीम है, उसके बाद हमारी टीम अपनी काम कर रही है। और वो वहाँ पैसा नहीं, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे हमने उसमें सब कुछ कर रहे होते हैं। तो दैट्स ए रिलैक्स एटमॉस्फेयर, बेनिफिट ऑफ दैट सिस्टम, यू स्टार्ट थिंकिंग लैटरली, आप रिसर्च पर चले जाते हैं। यहाँ पेशेंट लोड्स हैं, एम्स में रहा, हमने काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी पब्लिकेशंस हैं
1: जी,
0: वो आपकी है। अब हमारी, चूँकि मैं हमेशा टीचिंग में रहा
1: जी,
0: तो मैं तो मेरा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, दे आर डूइंग डीएम अंडर मी, डीएनबी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने अपना रूटीन बताया कि सुबह 8:30 बजे से और फिर शाम 7:30 बजे तक, एक लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज भी है, क्या एक डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, क्या डॉक्टर भी खुद में उस लाइफस्टाइल को जी पाते हैं, क्योंकि टेंशन भी बहुत है, बहुत सारा स्ट्रेस है।
0: ये आपकी जो हमने टाइम बताया 8:30 to 6:30 जब मैं घर में इंटर करता हूँ, उसके बाद ना मैं कोई मरीज देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसके बाद भी करते हैं
1: जी,
0: बिल्कुल। तो आप तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, रिचार्ज करने के लिए ह्यूमन को चाहिए टाइम। सो हमारा चूँकि सिस्टम है, और भी लोग हैं हमारे साथ बैठते हैं, तो हम उनसे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, रेजिडेंट हैं, जूनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है हमारे साथ, आपका कहना। तो हम बीच बीच में हॉलीडेज लेते हैं, संडे को मैं कुछ नहीं करता, संडे मॉर्निंग में वॉक करते हैं वगैरह, वी ट्राई वॉट एवर वी कैन डू। लेकिन एक बार यदि आप इंडिया में चैम्बर में बैठे हैं, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बाहर खड़े हैं
1: जी, स्थिति
0: तो, लेकिन ठीक है, मैनेज हो रही है, आप उसको आदत हो जाती है। अब हमारे यहाँ बहुत फेमस है, मैंने ये फेमस किया है कि मेदांता के डॉक्टर लंच नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं है।
1: तो वही मैं बात करूँ कि क्या खुद फॉलो कर पाते हैं?
0: नहीं, होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैडम का रोज होता है कि अरे 4 बजे खाना खा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? चाय पर आपकी पूरी ओपीडी चल रही है सुबह से 2 बार 3 बार, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, विच बैलेंस, कि मरीज आता है आपके इलाज से खुश होके गया, ठीक होके गया, दैट्स योर सेटिस्फेक्शन।
1: लोग कहते हैं कि जैसे बीपी की दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की या गठिया की बात हम करते हैं, कहते हैं कि पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी, क्या ये सही बात है डॉक्टर साहब?
0: ब्लड प्रेशर एज के साथ जो होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कर लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं। जो सेकेंडरी एज के साथ होती है वो खाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, ये सब डेवलप करता रहेगा। तो अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करनी है। अर्थराइटिस डिपेंड करता है किस तरह की अर्थराइटिस है, ट्रीटेबल है, हम नहीं बोलते, हम किसी को नहीं, इवन ओल्ड एज वाले को हम दवा नहीं देते हैं कि ये डिजनरेटिव एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन की आपको हमने डेफिनेशन बता दिया, इज यूजफुल पॉइजन।
1: यूजफुल पॉइजन
0: वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो।
1: अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जो क्योंकि फास्ट रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक वगैरह और बहुत सारी दवाइयां दे देते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या है डॉक्टर इसके पीछे?
0: इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे ओवर द काउंटर पेशेंट ही गए भाई बुखार लगा है थोड़े सेंट, मेजॉरिटी ऑफ दिस फीवर ऑफ वायरल फीवर, वायरल फीवर में बैक्टीरिया वाली मेडिसिन कैसे काम करेगी, वो अपने आप 4-5 दिन में चली जाती। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बैन है लेकिन वो फॉलो नहीं होता। सेकेंड थिंग ऑल्सो है कि डॉक्टर साइड से बुखार है एंटीबायोटिक नहीं, आपको लिखने की, बाहर के कंट्री में आप एंटीबायोटिक नहीं लिख सकते हैं ये, यहाँ पर क्योंकि आपकी ओवर द काउंटर अवेलेबल है,
1: अवेलेबल है बिल्कुल,
0: वो आप देख लेंगे। एक डॉक्टर ने लिखा 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक इनकी भी खाई, मूव करके कहीं और, उन्होंने हायर एंटीबायोटिक सोक, और हायर का मीनिंग क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने बदल के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी ने यदि डिजीज का नाम नहीं लिखा है देन हाउ यू कैन राइट एंटीबायोटिक्स। आप पहले आप डायग्नोसिस लिख दीजिए कि आप, वो डायग्नोसिस सही है नहीं है, मोस्ट लाइकली आपकी निमोनिया है, चेस्ट आप लिखें चेस्ट एक्सरे, तब ना आप एंटीबायोटिक देंगे। अब जैसे लूज मोशन से, मेजोरिटी लूज मोशन आर सेल्फ लिमिटिंग, उसमें क्या करनी होती है, आप इलेक्ट्रोल पाउडर दिया, नॉर्मल फ्लूड मेंटेन रखें, अपने आप वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, खाने पीने में ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन मोर इम्पॉर्टेंट, एंटीबायोटिक सब में लूज मोशन में नहीं दी
1: जाती, सब चल रहा है
0: ये बिकॉज आपकी जो सबसे चीप है इज द मेडिसिन। आप यदि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है पानी पियो ठीक हो गया, आप तुरंत चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास, इसने तो दवाई नहीं लिखा है
1: जी,
0: भूल गया दवा लिखना, वो दो मिनट से लिख देगा फिर
1: कि डॉक्टर साहब ने तो पूछा ही नहीं, ढंग से बात ही नहीं की है
0: क्योंकि अब समझने की बात है कि ये क्या है, तो बड़े डॉक्टर के पास जाने पर कम मरीज दवा लिखते हैं।
1: एक अच्छे व्यवहार का, डॉक्टर के एक अच्छे व्यवहार का देखिए कितना असर पड़ता है सर पेशेंट पर।
0: प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अपने जूनियर कलीग को सिखाते हैं इज इन द ऑर्डर ऑफ ABC।
1: ABC मीन
0: ए स्टैंड बॉर कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, दैट्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इज ए, बी इज बिहेवियर
1: मोर
0: बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, एंड सी कम्स इज द कॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर। सो इज नॉट द बड़ा डॉक्टर, आई लुक फॉर द सेफ डॉक्टर, सेफ डॉक्टर को ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, हमारे को दूसरे कलीग की ओपिनियन ले लेनी है, हम ये दवा नहीं यूज कर सकते हैं, हमारे को ये जबरदस्ती दवा नहीं लिखनी है, ये सब जगह फिट होती है। तो बिहेवियर ये तो एबिलिटी, आप बात सुनोगे, आपकी जब आप बात सुनने लगते हो पेशेंट की, आपकी बिहेवियर दैट मीन्स यू गॉट ए पेशेंस, यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट, पेशेंट आपको जब तक बोल नहीं रहा आप लिखना शुरू कर दोगे फायदा नहीं है।
1: यही बात मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि 9 से 10-11 सेकेंड बाद इंटरप्ट कर देते हैं डॉक्टर पेशेंट को,
0: इसका इस टाइम प्रेशर हमने बताया, मेरे को ओपीडी जब चलती है मेरे को वॉशरूम तक जाने नहीं देते, अब खत्म करनी है ना, अब हमने वहाँ पर 20 अपॉइंटमेंट्स होल डे का दिया हुआ है, वो पैर भी लग लग के हमारे को वो 40 हो जाती है, अब कैसे एडजस्ट करें, टाइम तो लिमिटेड है
1: जी।
0: तो उसमें बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ बोलते हैं जो रिलेवेंट नहीं होता। तब उसमें इंटरप्ट के, तो ये जो 9 वाले हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानते
1: जी,
0: क्योंकि वो फिर वो अपने घर की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर हमारे को, क्योंकि
1: दूसरों को भी देखना है,
0: UK में डिफरेंट सिस्टम है क्योंकि हमारे को उनके फैमिली के बारे में भी जाननी होती है, तो बोलते हैं हम सुनते हैं, यहाँ पर हमारे को टाइम लिमिटेड है,
1: लिमिटेड है,
0: तो अच्छे डॉक्टर पोलाइटली टॉपिक चेंज करते हैं,
1: चेंज कर देते हैं,
0: वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन पोलाइट, लेकिन यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, फ्रस्ट्रेशन उनके अंडर में भी आती है।
1: चलते चलते डॉक्टर साहब एक करियर से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं, जो युवा डॉक्टर आज MBBS या MD के बाद अपना रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में रूमेटोलॉजी की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, क्या स्कोप है और क्या चुनौतियाँ हैं?
0: ये तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया, यू लुक एट वन डिजीज, आपकी कितनी पॉपुलेशंस हैं, डॉक्टर का नंबर भी आपको बता दिया
1: जी,
0: अब सप्लाई डिमांड में तो गैप है, तो अब इसमें तो सवाल ही नहीं होनी चाहिए आपकी, इसमें तो जबेस, क्योंकि अभी मैं बता दूं,
1: स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, स्कोप तो बहुत है डॉक्टर साहब,
0: स्कोप बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले के टाइम में कार्डियोलॉजिस्ट लोग बनना चाहते थे, तो ये पता चलता था कि अभी ट्रेंड क्या चल, जब इनकी DM की एग्ज़ाम जो नीट सुपर स्पेशलाइज, उसमें कि टॉपर कौन सा रैंक में कहाँ जा रहा है, अब रूमेटोलॉजी अच्छे सेंटर में 200 ऑल ओवर इंडिया की 200 के नीचे नहीं जाती, ऊपर चली जाती है, तो डिमांड समझ लें, क्योंकि सीट कम है,
1: सीट कम,
0: तो इसलिए एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेशलिटी बिकॉज ये इतनी जल्दी एक्सपेंड होती जा रही है, इतनी नई मेडिसिन आ रही है, इतनी रिसर्च हो रहे हैं, एंड एवरी ईयर इट्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग, तो इसको हम तो सबको इनक्रेज, हमने मेडिसिन छोड़ के हमने रूमेटोलॉजी डेवलप की, नई चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, अब कार्डियोलॉजिस्ट नेफ्रो ऑलरेडी लोग काफ़ी हैं, और उसमें भी आधा चीज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि कार्डियो हार्ट में हार्ट वीक क्यों हुआ वो बता सकते हैं, इम्यूनोलॉजी है कि कौन सी बात है।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से, और बहुत सारी जानकारियां सर आपसे मिली, करियर से जुड़ी भी जानकारियां भी मिली, और डॉक्टर्स के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे थे कि हमें लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर का बिहेवियर होना चाहिए, दवाइयों को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अमूल्य जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू।
2: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीवा गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में मेदांता दम्बेदी सिटी गुरुग्राम में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग के चेयरमैन हैं। आपने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MD और एम्स में आप फैकल्टी रहे हैं। नई दिल्ली के बाद आप सीधे UK पहुंचे और वहां आपने लंबे समय तक प्रशिक्षण हासिल किया, एक हाई लेवल का प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद आप अपने देश भारत पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता जी मानव भारती सोसाइटी देहरादून के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। सर, एक शॉर्ट जर्नी जानना चाहेंगे आपकी।
1: राजेश जी, ऐसा है कि ग्रेजुएशन सब लोग MBBS बनते हैं तो उसके बाद MD करते हैं, जो हमने भी किया मौलाना आजाद से। उसके बाद आई जॉइंट एम्स एज ए सीनियर रेजिडेंट, देन आई रियलाइज कि बहुत सारी स्पेशलिटी जो है अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जिसको जनरल, उसके कारण, और ये बहुत कॉमन बीमारियों के साथ लिंक्ड है। तो उसमें एक बीमारी और एक स्पेशलिटी जो हम लोग ने स्टार्ट किया, मैं इससे, इस बीमारी से और इस तरह के विभाग से जुड़ा हुआ हूँ 94 से।
0: yes.
1: तो 94 में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, पहले ये क्या होता है, इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में जितनी ऑर्गेन है सब उसको कंट्रोल की जाती है एक तरह की हार्मोन्स या एक तरह के सब्सटेंस से जो इम्यून को आदर स्टिमुलेट करते हैं या सप्रेस करते हैं। ये चीज़ जो है ये बैलेंस्ड रहती है नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस आपकी, ये डिसरेगुलेट हो जाती है। तो उसमें इम्यून सेल्स जो हो गया वो हाइपर एक्टिव हो गया। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताएं कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, बहुत सारे कॉमन डिजीज़ हैं, हम उस पर आएंगे जैसे जैसे चर्चा होगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज़, लेकिन आम आदमी इसको गठिया जानता है।
0: जी,
1: हमने ऑटो इम्यून डिजीज बताया। जब इसमें इम्यून सेल हाइपर एक्टिव हो गए वो बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करते हैं। जी, उसमें आपका लंग्स भी आएगा, आपका हार्ट भी आएगा, आई भी आएगा, इसमें मुंह में भी सूखापन, आपके किडनी की इन्वॉल्वमेंट आती है, सारे सिस्टम के। उसी में एक सिस्टम जो है वो है मस्कुलोस्केलेटन, जो अर्थराइटिस। लेकिन मरीज को तो सिर्फ पेन हो रहा है इसलिए आपके पास आ रहा है।
0: जी,
1: तो इसलिए वो गठिया समझ के आपके पास आ रहा है। ये आपकी जो सोचने का ढंग था ये 90s में, तो सारे जो अर्थराइटिस के मरीज होते थे वो ऑर्थोपेडिशियन, जनरल फिजिशियंस, पैरामेडिक्स, बहुत सारे इस तरह के उसमें चले जाते थे। और ये कंसेप्ट था ये लाइलाज है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। उनको तो अदर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ही पता नहीं कि हार्ट, ये डिजीज़ हुआ तो इसमें हार्ट डिजीज़ जल्दी आएगी, इसमें लंग सिकुड़ने लगेगा। सो ये सारी जो इंटरेस्टिंग ये पार्ट ऑफ मेडिसिन आ गई, तब ये हुआ कि इसको डेवलप किया जाए। तो हमने जब सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म किया उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से, देन हमने बोला कि बाहर चले जाना चाहिए, कुछ नए थॉट्स आने चाहिए, नहीं तो वो डेवलप नहीं कर पाते। तो हम 4-5 साल बाहर रहे, उसके बाद एम्स में फिर फैकल्टी की तरह हमने ज्वाइन किया एंड वी डेवलप ए डिपार्टमेंट कॉल क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। उसमें हमारे 2-3 कलीग और थे, हमने इसको प्रमोट किया। आप कोई भी डिजीज़ लेंगे इसमें इम्यून मैकेनिज्म सबकी है,
0: सबकी है। बिल्कुल,
1: आप सिंपल सा आप देख ले मलेरिया।
0: जी,
1: मलेरिया में फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मलेरिया का इफेक्ट ऑटोइम्यून के कारण और दूसरे सिस्टम में आने लगता है। टाइफाइड आप ले लीजिए, टाइफाइड में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आके वो आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशन है इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। अब उसको रिकॉग्नाइज करनी है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए और हमारे दर्शक को समझाने के लिए रहेगा कोविड
2: जी।
1: कोविड एक इन्फेक्शन था
2: जी,
1: वायरल इन्फेक्शन, ये हम जानते थे। जब ये वायरस बॉडी में गया वो आपको डैमेज किया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने रिएक्ट किया, वो अपना इम्यून सिस्टम को हाइपर कर दिया। तो जो वायरस था वो आपके बॉडी से 5-7 दिन में बाहर चला गया, लेकिन जो हाइपर रह गया, हाइपर वो इम्यून सिस्टम सेल्स, वो आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगे। जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगी, उसके कारण सांस में तकलीफ आने लगी। ये वायरस तो अपना काम करके इनिशिएट करके चला गया और हमारे को ऑटोइम्यून, तो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाएंगे। स्टार्ट वायरस से हुआ, ड्रग से हुआ, किसी चीज़ से होगा, लेकिन ये रूमटॉइड भी उसी टाइप से है। लूपस एसएलई, बहुत लोग सफ़र करते हैं एसएलई, स्क्लेरोडर्मा है, मायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, नर्व्स की डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लूपस किडनी की, लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं। अब इसको अप्रोच करने का दो तरीका, या तो जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व है उसके डॉक्टर देखें
2: जी,
1: जो करते रहे वो इजी है। सांस फूल रही है, हम सांस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको क्या पता कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब सांस के डॉक्टर देखते हैं कि सांस के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यून मैकेनिज्म्स मेडिएट, उसके टेस्ट काफ़ी डेवलप हो गए। अब थोड़ी सी टेस्ट में और भी नई नई चीज़ टेस्ट आती रहती है, जो रिफाइंड करते रहते हैं डिजीज़ को, हम उसको क्लासिफाई करना शुरू किया। सो ये आपकी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी वाली बात। अब रूमेटोलॉजी में क्यों इसको जोड़ा गया? रूमेटोलॉजी में मतलब सिंपल सा कि रूमेटिक आपको पेन हो रहा
2: है।
1: तो जितने भी सिस्टम हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या आएगा?
2: जॉइंट्स पेन।
1: तो आपको ये समझना है कि अर्थराइटिस सब एक तरह का नहीं है, 100 से ज़्यादा तरह के अर्थराइटिस होते हैं। अब उसमें कैसे हम कौन अर्थराइटिस है ये पता करने के लिए ये साइंस को डेवलप किया गया
2: जी।
1: अब ये जो डिजीज है इज़ वेरी कॉमन, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज हमने बोला आपको, हम ऑस्टियो की बात नहीं कर रहे हैं जो एज के साथ है, वो वीएटीए के
2: जी।
1: रूमेटॉइड, अब देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस मानते हैं कि इंडिया में 1% लोग को होता है
2: जी।
1: 1% का मतलब आप देख लीजिए, आपके पास 140 करोड़ है
2: की पॉपुलेशन,
1: तो 1.4 करोड़
2: जी।
1: आप इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। मैं इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन भी रन करता था, वहाँ पर हमने जब रजिस्टर्ड, अब इसकी डीएम एंड सारी स्पेशलिटी शुरू हो गई है। इनफैक्ट हम मेदांता में हम उनको टीचिंग भी करते हैं, इस नॉट मल्ली की पेशेंट देखते हैं। सो एवरी ईयर वी टेक 2 डीएम, डीएनबी बोलते हैं। तो हमारे पास एट एनी गिवन टाइम 6 डीएनबी स्टूडेंट जिनको हम ट्रेन कर देते हैं सुपर स्पेशलिटी। हम आपकी फिर रूमेटॉइड बढ़ा के एक बातें और बताते हैं, 1.4 करोड़ कौन देखेगा?
2: बड़ी संख्या,
1: बहुत बड़ी संख्या, और ये आपको 3-6 महीने पर देखते रहने का है
2: जी।
1: तो साल में कितनी बार हुआ देख लीजिए, आपके पास जो ट्रेन रूमेटोलॉजिस्ट एट द मोमेंट इंडिया में है मुश्किल से 3,000 भी नहीं है।
2: तो एक के हिसाब से तो फिर बड़ी संख्या बैठ,
1: समझ ले
2: जी।
1: आप बोलेंगे कि मेरे पास दिखाएं, अब हमारे पास हालांकि हम वेटिंग लिस्ट नहीं रखना चाहते हैं
2: जी,
1: लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत सारे के महीने भर की है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जब आपने इस कोर्स को किया था, इस फील्ड में आप आए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या वजह रही, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप इस फील्ड में आए?
1: मेडिसिन में चैलेंज सभी डॉक्टर चाहते हैं
2: जी।
1: जब मल्टी सिस्टम होता है ना तो चैलेंज बढ़ जाती है
2: जी,
1: और आप एक तरह से एंटीबायोटिक देना वो सब लोग कर लेता है। आपकी इस फील्ड में आने के बाद डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है
2: जी,
1: कि ये इम्यून रिएक्शंस आपके जो लिम्फोसाइट्स है बी सेल की हाइपर एक्टिविटी से हो रही है। अब हमने दवा बनाया कि बी सेल की हाइपर एक्टिविटी कम कर दें, پہلے لوگوں کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کر کے چلے.
2: بالکل
1: آپ یدی ٹھیک ٹائم پر ہمارے پاس آئیں گے ہم گارنٹی دیتے ہیں ہول لائف آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی, لیکن جو ڈیمیج ہو گیا اس کو نہیں. تو یہ چیلنج. اب جب رومٹوائڈ ہم نے دیکھا ان کے چیسٹ پر ہم نے اسٹیتھوسکوپ رکھا, اس میں کرپیٹیشنز آ رہے جو مطلب کہ تھوڑی سی لنگس میں سکڑن کی بات, اور یہ جو سکڑن ہے جس میں وہ سانس پھول رہی ہے وہ سوچ رہے کہ دمے سے چل رہی ہے, نو یہ آپ کی گٹھیا سے ہے. اب اس کو ہم گٹھیا ٹھیک کر دیتے ہیں, ایمنولوجیکل پروسیس صحیح کر دیتے ہیں, لنگس بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا اور گٹھیا بھی, ہارٹ کی بھی ساتھ میں پرابلم آئے وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیسن میں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے.
2: اکثر ڈاکٹر صاحب بیوہارک روپ سے دیکھا جائے, عام ویکتی کی ہم بات کرتے ہیں, درد ہوا, جوڑوں میں درد ہے, باڈی کے کسی بھی پارٹ میں درد ہے, وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں اور پین کلر لے لیتے ہیں, تو اس کا کتنا خراب پربھاؤ باڈی پہ پڑتا ہے؟
1: دیکھیے یہ ہماری دیش کی درباگتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ سب میڈیسن نا اوور دا کاؤنٹر آپ خرید لیتے ہیں.
2: جی
1: میڈیسن کو جو ہم اپنے ٹرم میں ویری سمپل وے میں ڈیفائن کریں, میڈیسن کو از اے یوزفل پوائزن. تو یہ یوزفل اس سمے تک رہے گا جب تک کسی کلینیشین جس کو نالج ہے وہ پرسکرائب نہ
2: پرسکرائب نہ
1: آتی. آپ جا کے ان سے لے لیتے ہیں جو کامن پین کلر, چلیے آپ کی آتی ہے اٹریکوکسی, نیکوکسیا ایک برانڈ ہے یا واورن ویری کامن برانڈ ہے, دے کین کل یو آلسو.
2: اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ یوزفل پوائزن ہے. اکثر ایک اسٹوری میں پڑھ رہا تھا تو اس اسٹوری میں یہ تھا کہ ون پیل ٹو مینی اس کا ٹائٹل تھا. جب میں گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ ایک ایج کے بعد شریر میں وبھن روگوں میں وبھن انگوں میں روگ آ جاتے ہیں, کارڈک ہے, لنگس ہے, اور بھی طرح کے روگ سے الگ الگ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں, الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, دوائیاں لکھی جاتی ہیں, سالٹ لگ بھگ سیم ہوتے ہیں کئی دوائیوں کے, تو ایکسس ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسی استھتی میں ایک سامانیہ روگی کو کیا کرنا چاہیے؟
1: یہ خاص کر کے ڈینجرس ہوتا ہے ایلڈرلی پاپولیشن میں, اس کو ہم اپنے ٹرم میں بولتے ہیں پولی فارمیسی.
2: جی پولی فارمیسی
1: اس کے ایک ڈیفینیشن ہے. سو یہ جو بھی پیشنٹ ہیں آپ کو جو بھی میڈیسن دی جا رہی ہے آپ کو ایک فزیشین کے پاس رہنا ہے, ہو کین سی دا کارڈیالوجی میں کیا میڈیسن چل رہی ہے, یعنی آپ کو کڈنی کی ہے, ڈائبٹی, سب وہ کر کے ایک مین پرسکرپشن بنائے. ہمارے یہاں جو ہے جو ڈاکٹر چاہیے ہمارے کو فار جنرل پاپولیشن از جنرل میڈیسن والے, لیکن ہمارے کو ہارڈ لگتا ہے ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس گئے, کارڈیولوجسٹ اپنے میڈیسن کے ساتھ کیلشیم, وٹامن ڈی, ادر ملٹی وٹامن, اچھا یہاں پہ بھی درد ہے آپ یہ بھی لے لو, اور وہ درد والے دکان پہ گئے. اس سے کیا ہو کہ بہت ساری بات ہے, آل دیز ڈرگ جتنی آپ نمبر کریں گے انکریز وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کی سائڈ افیکٹ آتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی پرسکرپشن جنرل فزیشین لکھتا ہے ان کو اپنی ڈیزیز جس کے لیے وہ گیا ہے ساتھ میں ان کو لکھنی چاہیے کہ ان کو اور کون سی بیماری ہے.
2: جی بالکل.
1: اب جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے ان کو ہم پین کلر نان اسٹاپ نہیں دے سکتے, اینٹی انفلامیٹری نہیں دے سکتے, جس کو کڈنی کی انوالومنٹ ہے اس میں تو کنٹرا انڈیکیٹر.
2: کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس ہے؟
1: یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن دو چیزیں اس میں ہیں بیکاز اس میں گورنمنٹ کو آگے آنا ہوتا ہے. ویری سمپل, آپ کے پاس پیشنٹ بہت ہیں, ڈاکٹر کے پاس سو کال ٹائم نہیں ہے. اب جیسے میں دیکھیے یو کے میں جب پریکٹس کرتا تھا ہول ڈے میں صرف 5 مریض دیکھتا تھا, اب یہاں پر کوئی بلیو تو نہیں کرے گا کہ 5, پھر آپ کی گھر کیسے چلے گی, روٹی کیسے آئے گی.
2: بالکل بالکل.
1: تو آپ کی ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور جیسے جیسے کام ہوا آپ کٹنگ دا کارنر کرنے لگتے ہو. اب یہاں پر جو بھی ایک کوئی اچھے پریکٹیشنر آپ دیکھو دن بھر میں وہ 40 مریض دیکھ رہے ہیں کم سے کم, اس سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں.
2: جی
1: 40 مریض کو 8 گھنٹے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے اس مریض پہ کتنا ٹائم آپ نے دیا.
2: بالکل اسی سوال پہ میں ابھی آگے آؤں گا.
1: تو اس میں کیا ہے कि जो एक दोनों साइड में प्रॉब्लम है, पेशेंट साइड में क्या प्रॉब्लम है कि दे गो फॉर द फेमस डॉक्टर, अब सब लोग फेमस डॉक्टर के पास जाएंगे तो भीड़ तो रहेगी ना, वो रात के 2 बजे तक मरीज देख रहा है, वो आपको 2 मिनट दे रहा है, हमको वो डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको वो डॉक्टर चाहिए जो आपकी बात सुन रहा है, 10 मिनट टाइम दिया, उसके बाद वो भी ब्लेम इज कि वो भी आपको ठीक से ट्रीट करेगा, लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश डॉक्टर है वो तो फेमस हो गए, इसलिए गांव से भी लोग आएंगे कि फलना के यहाँ जाने का है जी। तो वो वहाँ पर रात के 2 बजे का टाइम लेके लगाएंगे, वो बेचारा डॉक्टर सोते हुए, वो भी आई एम नॉट सेइंग कि ही इज डूइंग रॉन्ग, लेकिन उसे लगता है इतने मरीज हैं हम कुछ भी भला कर सकते हैं, हम करें
2: जी,
1: लेकिन टाइम तो कम होता चला गया।
2: इस समय डॉक्टर्स की कमी है, अथॉरिटीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है, और आप जैसा कि आपने बताया कि यूके में 5 मरीज पर डे, पर यहाँ तो लिस्ट वेटिंग बहुत ज़्यादा है,
1: तो इसलिए तो हम यहाँ पर थोड़े से इनोवेट होते हैं, वहाँ पर एक मरीज में सब कुछ करनी होती है, आधा घंटे का टाइम उनको देना होता है, सारा कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मरीज की हम उतनी डिटेल में नहीं लिख रहे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं, सेकंड है वो रिकॉर्ड हम पेशेंट को दे देते हैं जी। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट वो कुछ समय के बाद घर शिफ्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कहीं गया, बाढ़ आ गई, रिकॉर्ड गई, यही प्रॉब्लम है। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हमने आपको जो रिकॉर्ड दिया ओपीडी में उसकी एक कॉपी हमने अपने कंप्यूटर पर, इसको हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाला, वो आपका खाली UHID नंबर रहे, हम उससे निकाल के कि आपके पहले के क्या रहे, वो ये सिस्टम जो है वो कॉर्पोरेट में है, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते।
2: जैसा कि आपने अभी बताया, ये मैं बहुत पहले भी पढ़ा था कि मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटलाइज कर देना, जैसे कॉर्पोरेट में जैसा आप बता रहे हैं वेदांता में होता है सर ये सब, लेकिन प्राइवेट में और जगह जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंने नहीं देखा है।
1: देखिए दो सिस्टम है, जो इन पेशेंट है उसके रिकॉर्ड बाय लॉ हमें रखनी होती है, तो इन पेशेंट एडमिट हुए आपके रिकॉर्ड रहेगी, उसके एक 10 साल का है 5, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती पेपर रिकॉर्ड के लिए, डिजिटलाइज कर देने पर आपको बढ़ गया। हम जो बातें कर रहे हैं वो ओपीडी रिकॉर्ड की
2: जी, ओपीडी रिकॉर्ड
1: जो कि आप मेजॉरिटी का आप देखेंगे वो लिख के आते हैं, उस पर 4 चीज़ खाली दवा लिखी हुई है और साइन करके उन्हें दे दिया, डॉक्टर ने भी नहीं रखा है
2: जी।
1: इमरजेंसी में भी वो मरीज फ़ोन करता है डॉक्टर को, उसे आइडिया नहीं, अनलेस कि वो उनके एरिया का रेगुलर आ रहा हो, क्योंकि वो ट्रेस्ट नहीं कर सकता ना कि हम इसको क्या कर रहे थे। तो ये सिस्टम अब्रॉड बहुत सॉलिड है, वो आप कॉल करेंगे हमारा, हम करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं जो इमरजेंसी में, क्योंकि हमारे मरीज ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है 1 बजे आपको, तब तक हमारा स्टाफ उनका सारा रिकॉर्ड निकाल के हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है।
2: क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स की एक लंबी लाइन है, डॉक्टर के पास समय नहीं है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मेडिकल हिस्ट्री भी डिजिटलाइज हो जाए और एक क्लिक पर पता चल जाए कि पेशेंट का अब क्या हाल है।
1: ये बहुत कुछ शुरू होने जा रहा है कि आपकी जो कार्ड आती है ना, कार्ड में आपको हमने दिया और उसको उसमें अपलोड करके आपको कार्ड पकड़ा दिया
2: जी।
1: हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि आपको हम 80% तो इंडिया को विलेज में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अमाउंट अभी भी 60 के आसपास है।
2: बिल्कुल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल है।
1: अब वो जब आते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच डॉक्टर की है। आपने जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें 1 मिनट भी आप एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, सेक्रेटरी रख लीजिए, और वो कुछ नहीं आता इनका नंबर और स्कैन करके आप सिस्टम पर डाल लीजिए कम से कम खोल के। गवर्नमेंट ये फोर्स कर रही है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग कि जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो टाइप होना चाहिए। अभी आपने सवाल नहीं पूछा, नहीं तो आप नेक्स्ट पूछने वाले हैं
2: जी, जी, जी।
1: कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो तो कोई पढ़ नहीं पाता,
2: पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो उसमें बहुत मिस्टेक है। अंडर दिस डॉक्टर शुड आल्सो बी नोइंग, दे नो, एवरीबॉडी नोज, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड कि भाई यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग, दिस इज नॉट कि जी आपकी गलती से भाई 2000 रुपये नुकसान हुआ, 1,00,000 रुपये नुकसान, दिस इज पेशेंट वी आर टॉकिंग।
2: सबसे बड़ा सवाल तो जीवन का है रुकसा।
1: हाँ, इसलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आ रही है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट,
2: बहुत इम्पोर्टेंट, और वो हो नहीं रहा है,
1: वो नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया है, सिस्टम, गवर्नमेंट इंडिया इज डूइंग ग्रेट जॉब, वनली थिंग है कि इम्प्लीमेंट करने में, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर का शहर में ज़्यादा है, गांव में कमी, तो उसके बाद हमको लैब स्टैंडर्डाइज करना है, वो सबका उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया NABH करके ना, कोई अच्छे लैब को बिना उसका वो करते नहीं है,
2: नहीं
1: वो देख के उनकी ऑडिट होती रहती है। सो दीज थिंग्स की अब किसी की हीमोग्लोबिन एक जगह से आपकी सिंपल 11 आई, एक जगह से 5 आ रही है, वो
2: डिफरेंस आता है उसमें,
1: तो अब आपका अब डॉक्टर बेचारा परेशान कि अब किसकी बातें माने क्लिनिकल कितना भी कर ले, लेकिन लैब में दिख रहा है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से हम गठिया पर आते हैं। अक्सर जोड़ों में हल्का सा भी दर्द होता है तो एक लोग सामान्य तौर पे कहते हैं गठिया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसे ही कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं कि साहब प्रोटीन बढ़ गया है आपका, अरहर की दाल मत खाइए, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि हल्का सा दर्द होने पर भी क्या गठिया मान लिया जाता है या जोड़ों का दर्द?
1: देखिए, कोई भी जॉइंट्स पेन हुआ अर्थराइटिस कर लें, दैट्स अ गठिया, वेरी वीक वर्ड में। गठिया बहुत तरह की है, यूरिक एसिड की गठिया इज

0: डिफरेंट, उसमें ये सारी बातें होती हैं, उसको हम गाउट बोलते हैं, वो एक तरह की गठिया वही से, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है उसका। लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड रेज रहने से और थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ, गाउट बोले नहीं
1: जी,
0: वो नहीं होता। यूरिक एसिड आपके नॉर्मल बॉडी में वो आपका बढ़ता है एज के साथ, लेडीज में कम रहेगी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, मेनोपॉज के पहले वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का काम, मेल में थोड़ा ज़्यादा, जो इंटेलिजेंट मेल हैं उसमें यूरिक एसिड थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम यू बोलते आप इंटेलिजेंट हैं 7.6 यूरिक एसिड को भूल जाइए। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रखते हैं, जो मोटे हैं, डायबिटीज़ कार्डिय, उसमें यूरिक एसिड वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जनरल बॉडी की कंडीशन इज़ नॉट गुड, किडनी इन्वॉल्वमेंट आने लगी है, यूरिक एसिड ऊपर होने लगा है। तो सिर्फ यूरिक एसिड के बेसिस पर हम गठिया गॉट नहीं बोलते,
1: नहीं कह सकते। सर, आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें।
0: भाई मैं मुकेश का फैन हूँ
1: सर,
0: ठीक है ना, हमारे टाइम में मुकेश का, उनके सारे गीत अच्छे हैं, लेकिन गीत में एक पूरा पश्चिम का गाना, ठीक है, यदि आपके पास हो
1: जी सर,
0: तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: तो हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है पूरा पश्चिम फिल्म का एक गीत।

0: मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिसिन तो बहुत सिंपल सी भी हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, वो उतना नहीं। मरीज को, यदि कोई मरीज सुन रहे हो, यदि आपको लगता है फाइनेंस के कारण हम ये ट्रीटमेंट परस्यू नहीं करें, टॉक टू योर डॉक्टर, वो कम कर देंगे, दूसरी दवा दे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप छोड़ देंगे बाद में,
1: जैसे आप तो फॉलोअप कर लेते हैं पेशेंट के साथ, की बातचीत हो जाती है कि भाई नहीं आ रहे हो, आप कॉल कर लिया। लेकिन अधिसंख्यक लोग जो है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं, तो वहां तो फॉलोअप भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास आए, पर्चा लिखा, गए, फिर इसके बाद पेशेंट और डॉक्टर का संबंध खत्म।
0: इसलिए राजेश जी, आपके चैनल से हम चाहते हैं कि आप लाइव शो उनसे मेरे को कनेक्ट कराएं। हम करते रहे ऑल इंडिया रेडियो पर, उसमें क्या है, वो कनेक्ट होते हैं। वो सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट की कमी है सब लोग, और जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं बड़े शहर में हैं, या टू टायर सिटी या थ्री टायर, उसके नीचे नहीं होते हैं। तो उनसे खाली एक बार वो कनेक्ट हो जाए ना, दे विल टेक केयर ऑफ। तो आप जब लाइव शो कराते हैं, आप अपने गांव के लोगों को
1: टेलीमेडिसिन कितना सक्सेस है डॉक्टर साहब,
0: वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो आपके, क्योंकि आपका जो माध्यम है ये बहुत लोग को जाएगा। हमारी जो टेलीमेडिसिन है 1-to-1, तो वो जो अपेयर होके मेरे से नहीं आ सकते हैं, तो वी डू वीडियो, दैट्स ए टेलीमेडिसिन हम करते हैं। लेकिन 1-to-1
1: बिल्कुल,
0: वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान रखें, 1% ऑफ द,
1: दूसरा
0: आपको कैलकुलेशन बता दिया
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड है कि हम आपके माध्यम से और लोगों की तरफ पहुंचे।
1: डॉक्टर साहब, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और फिर यूके का सिलीगुड़ी, पूरा वहाँ की अलग व्यवस्था है, किस तरह से देखते हैं सफर को?
0: बहुत डिफरेंट है। मौलाना आजाद से हमने MD किया, लेकिन हम उसके बाद एम्स में ही थ्रू आउट रहे हैं। हमने एम्स में 1994 में ज्वाइन किया था, सीनियर रेजिडेंसी, पुल ऑफिसर, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि हम 97 में हम यूके चले गए, एंड 2001 में आके हमने फिर एम्स में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। उसके बिफोर हम ज्वाइनिंग मेदांता जब ज्वाइन किया, उसके पहले हम एम्स में थे, वहाँ से छोड़ के इधर हम चले हैं। वहाँ पर ना पेशेंट का लोड नहीं है, पेशेंट आपकी बातें समझते हैं, केयर करते हैं। सेकंड थिंग है कि हेल्थ केयर में एक पिरामिड का जोर होता है, सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता, यू नीड टू हैव ए पैरामेडिक्स,
1: बिल्कुल,
0: यू नीड टू हैव ए काउंसलर, ये सब वहाँ पर वेल डेवलप्ड है। अब हमारे को फिजियो को भेजने क्या है, वो हम कर दिया, फिजियो घर जाके आपकी एक्सरसाइज कराता है, ये यहाँ पर नहीं हो पाता। यदि आपने फिजियो को रेफर किया तो वो कि ये तो ऐसे ऐसे बताया नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये लोग ऑर्थोटिस्ट हैं, ये सारे वहाँ पर। प्लस यूके में एवरीथिंग इज अंडर NHS,
1: तो
0: पेशेंट इज नॉट पेइंग एनीथिंग। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में मरीज जाना पसंद नहीं करते हैं, तो प्राइवेट, तो अब कॉस्ट इज ए इशू। तो यदि आप मुझे बोलेंगे कि वहाँ का और यहाँ का, एक ही लाइन में मैं बोलता हूँ, मैं जब तक वहाँ था हम उसको बोलते थे वर्किंग हॉलीडे। मैं हॉलीडे पर हूँ, काम भी कर रहा हूँ,
1: काम भी कर रहा हूँ, वर्किंग हॉलीडे।
0: और यहाँ पर जब मैं हूँ, मैं घर छोड़ता हूँ 8:30 में, आज शाम को 6:30-7 बजे
1: घर पहुँचते,
0: जबकि हमारी टीम है, उसके बाद हमारी टीम अपनी काम कर रही है। अब वो वहाँ पैसा नहीं, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे हमने और उसमें सब कुछ कर रहे होते हैं, तो दैट्स ए रिलैक्स एटमॉस्फेयर। बेनिफिट ऑफ दैट सिस्टम, यू स्टार्ट थिंकिंग लैटरली, आप रिसर्च पर चले जाते हैं। यहाँ पेशेंट लोड से हैं, एम्स में रहा, हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी पब्लिकेशन है
1: जी,
0: वो आपकी है। अब हमारी, चूँकि मैं हमेशा टीचिंग में रहा, तो मैं तो मेरा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, दे आर डूइंग डीएम अंडर मी।

0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपना रूटीन बताया कि सुबह 8:30 बजे से और फिर शाम 7:30 बजे तक, एक लाइफ स्टाइल, क्योंकि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज भी है, क्या एक डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, क्या डॉक्टर भी खुद में उस लाइफ स्टाइल को जी पाते हैं? क्योंकि टेंशन भी बहुत है, बहुत सारा स्ट्रेस है।
1: ये आपकी जो हमने टाइम बताया 8:30 to 6:30, जब मैं घर में इंटर करता हूँ, उसके बाद ना मैं कोई मरीज देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसके बाद भी करते हैं
0: जी।
1: तो आप तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। रिचार्ज करने के लिए ह्यूमन को चाहिए टाइम। सो हमारा चूंकि सिस्टम है, और भी लोग हैं हमारे साथ बैठते हैं, तो हम उनसे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं। रेजिडेंट हैं, जूनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है हमारे साथ, आपका कहना। तो हम बीच बीच में हॉलीडेज लेते हैं। संडे को मैं कुछ नहीं करता, संडे मॉर्निंग में वॉक करते हैं वगैरह, वी ट्राई वॉट एवर वी कैन डू। लेकिन एक बार यदि आप इंडिया में चैम्बर में बैठे हैं, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बाहर खड़े हैं
0: जी, स्थिति
1: तो। लेकिन ठीक है, मैनेज हो रही है, आप उसको आदत हो जाती है। अब हमारे यहाँ बहुत फेमस है, मैंने ही फेमस किया है कि मेदांता के डॉक्टर लंच नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं है।
0: तो वही मैं बात करूँ कि क्या खुद फॉलो कर पाते हैं?
1: नहीं, होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैडम का रोज होता है कि अरे 4 बजे खाना खा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? चाय पर आपकी पूरी ओपीडी चल रही है सुबह से 2 बार 3 बार, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, विच बैलेंस, कि मरीज आता है आपके इलाज से खुश होके गया, ठीक होके गया, दैट्स योर सेटिस्फेक्शन।
0: लोग कहते हैं कि जैसे बीपी की दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की या गठिया की बात हम करते हैं, कहते हैं कि पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी, क्या ये सही बात है डॉक्टर साहब?
1: ब्लड प्रेशर एज के साथ जो होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कर लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं। जो सेकेंडरी एज के साथ होती है वो खाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, ये सब डेवलप करता रहेगा। तो अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करनी है। अर्थराइटिस डिपेंड करता है किस तरह की अर्थराइटिस है, ट्रीटेबल है, हम नहीं बोलते, हम किसी को नहीं, इवन ओल्ड एज वाले को हम दवा नहीं देते हैं कि ये डिजनरेटिव एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन की आपको हमने डिफिनेशन बता दिया, इज यूजफुल पॉइजन,
0: यूजफुल पॉइजन,
1: वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो।
0: अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जो, क्योंकि फास्ट रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक वगैरह और बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या है डॉक्टर साहब इसके पीछे?
1: इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे ओवर द काउंटर पेशेंट ही गए, भाई बुखार लगा है थोड़ा सा, मेजॉरिटी ऑफ दिस फीवर ऑफ वायरल फीवर, वायरल फीवर में बैक्टीरिया वाली मेडिसिन कैसे काम करेगी? वो अपने आप 4-5 दिन में चली जाती। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बैन है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। सेकेंड थिंग ऑल्सो है कि डॉक्टर साइड से बुखार है एंटीबायोटिक नहीं, आपको लिखने की, बाहर के कंट्री में आप एंटीबायोटिक नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ पर क्योंकि आपकी ओवर द काउंटर अवेलेबल है
0: बिल्कुल,
1: वो आप देख लेंगे। एक डॉक्टर ने लिखा 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक इनकी भी खाई, मूव करके कहीं और, उन्होंने हायर एंटीबायोटिक सोक, और हायर का मीनिंग क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने बदल के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी ने यदि डिजीज का नाम नहीं लिखा है, देन हाउ यू कैन राइट एंटीबायोटिक्स? आप पहले आप डायग्नोसिस लिख दीजिए कि आप, वो डायग्नोसिस सही है नहीं है, मोस्ट लाइकली आपकी निमोनिया है, चेस्ट इन, आप लिखें चेस्ट एक्सरे, तब ना आप एंटीबायोटिक देंगे। अब जैसे लूज मोशन से, मेजोरिटी लूज मोशन आर सेल्फ लिमिटिंग, उसमें क्या करनी होती है, आप इलेक्ट्रोल पाउडर दिया, नॉर्मल फ्लूड मेंटेन रखें, अपने आप वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। खाने पीने में ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन मोर इम्पॉर्टेंट, एंटीबायोटिक सब में लूज मोशन में नहीं दी जाती,
0: सब चल रहा है
1: ये, बिकॉज आपकी जो सबसे चीप है इज द मेडिसिन। आप यदि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है पानी पियो ठीक हो गया, आप तुरंत चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास, इसने तो दवाई नहीं लिखा है
0: जी,
1: भूल गया दवा लिखना, वो दो मिनट से लिख देगा फिर
0: कि डॉक्टर साहब ने तो पूछा ही नहीं, ढंग से बात ही नहीं की है
1: क्योंकि अब समझने की बात है कि ये क्या है। तो बड़े डॉक्टर के पास जाने पर कम मरीज दवा लिखते हैं।
0: एक अच्छे व्यवहार का, डॉक्टर के एक अच्छे व्यवहार का
1: देखिए
0: कितना असर पड़ता है सर पेशेंट पर।
1: प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अपने जूनियर कलीग को सिखाते हैं इज इन द ऑर्डर ऑफ ए बी सी।
0: ए बी सी मीन
1: ए स्टैंड बॉल की हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, दैट्स एबिलिटी। एबिलिटी इज ए, बी इज बिहेवियर,
0: मोर
1: बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, एंड सी कम्स इज द कॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर। सो इज नॉट द बड़ा डॉक्टर, आई लुक फॉर द सेफ डॉक्टर। सेफ डॉक्टर को ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, हमारे को दूसरे कलीग की ओपिनियन ले लेनी है, हम ये दवा नहीं यूज कर सकते हैं, हमारे को ये जबरदस्ती दवा नहीं लिखनी है। ये सब जगह फिट होती है। तो बिहेवियर ए तो एबिलिटी, आप बात सुनोगे, आपकी जब आप बात सुनने लगते हो पेशेंट की, आपकी बिहेवियर दैट मीन्स यू गॉट ए पेशेंस, यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट। पेशेंट आपको जब तक बोल नहीं रहा आप लिखना शुरू कर दोगे फायदा नहीं है।
0: यही बात मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि 9 से 10-11 सेकेंड बात इंटरप्ट कर देते हैं डॉक्टर पेशेंट को,
1: इसका वेस्ट टाइम प्रेशर। हमने बताया मेरे को ओपीडी जब चलती है मेरे को वॉशरूम तक जाने नहीं देते, अब खत्म करनी है ना। अब हमने वहाँ पर 20 अपॉइंटमेंट्स होल डे का दिया हुआ है, वो पैर भी लग लग के हमारे को वो 40 हो जाती है, अब कैसे एडजस्ट करें, टाइम तो लिमिटेड है
0: जी।
1: तो उसमें बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ बोलते हैं जो रिलेवेंट नहीं होता। तब उसमें इंटरप्ट के। तो ये जो 9 वाले हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानते
0: जी,
1: क्योंकि वो फिर वो अपने घर की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर हमारे को, क्योंकि
0: दूसरों को भी देखना है।
1: यूके में डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि हमारे को उनके फैमिली के बारे में भी जाननी होती है, तो बोलते हैं हम सुनते हैं। यहाँ पर हमारे को टाइम लिमिटेड है,
0: लिमिटेड है,
1: तो अच्छे डॉक्टर पोलाइटली टॉपिक
0: चेंज कर देते
1: वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, फ्रस्ट्रेशन उनके अंडर में भी आती है।
0: चलते चलते डॉक्टर साहब एक करियर से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। जो युवा डॉक्टर आज MBBS या MD के बाद अपना रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में रूमेटोलॉजी की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, क्या स्कोप है और क्या चुनौतियाँ हैं?
1: ये तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया, यू लुक एट वन डिजीज, आपकी कितनी पॉपुलेशंस हैं डॉक्टर का नंबर भी आपको बता दिया
0: जी।
1: अब सप्लाई डिमांड में तो गैप है, तो अब इसमें तो सवाल ही नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें तो जब क्योंकि अभी मैं बता दूं
0: स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, स्कोप तो बहुत है डॉक्टर साहब,
1: स्कोप बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले के टाइम में कार्डियोलॉजिस्ट लोग बनना चाहते थे, तो ये पता चलता था कि अभी ट्रेंड क्या चले, जब इनकी DM की एग्ज़ाम जो नीट सुपर स्पेशलाइज उसमें कि टॉपर कौन सा रैंक में कहाँ जा रहा है। अब रूमेटोलॉजी अच्छे सेंटर में 200 ऑल ओवर इंडिया की 200 के नीचे नहीं जाती, ऊपर चली जाती है, तो डिमांड समझ लें क्योंकि सीट कम है। तो इसलिए एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेशलिटी बिकॉज ये इतनी जल्दी एक्सपेंड होती जा रही है, इतनी नई मेडिसिन आ रही है, इतनी रिसर्च हो रहे हैं, एंड एवरी ईयर इट्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग। तो इसको हम तो सबको इनक्रेज, हमने मेडिसिन छोड़ के हमने रूमेटोलॉजी डेवलप की, नई चीज इस्टेब्लिश करनी है। अब कार्डियोलॉजिस्ट ऑलरेडी लोग काफ़ी हैं, और उसमें भी आधा चीज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि कार्डियो हार्ट में हार्ट वीक क्यों हुआ वो बता सकते हैं, इम्यूनोलॉजी है कि कौन सी बात है।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से, और बहुत सारे

0: जानकारियां सर आपसे मिली, करियर से जुड़ी हुई जानकारियां भी मिली, और डॉक्टर्स के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे थे कि हमें लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर का बिहेवियर होना चाहिए, दवाइयों को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अमूल्य जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।

0: रे शोर।
1: शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट्स आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा, उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन होते हैं रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में, देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में ही जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है, जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता, तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी थे, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया है सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशन होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके सिक्स क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 से 12, तो हमने ऐसे जूनियर, सीनियर, मिडिल, ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है, और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रहरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी ज़ू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू. ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट

0: क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।
1: जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
0: सर एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज करते हैं, दैट इज किर्कपैट्रिक मॉडल। सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं। सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है।
1: ये जानना चाहिए ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में।
0: सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन। उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं। उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स। उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया। उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये सब चीजों से बेस्ड होता है।
1: मैं जानना चाहूंगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था। जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे।
0: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था। तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना, और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना। तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या। क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, उत्तराखंड में रहते हैं हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्या जिसका आप जिक्र करना चाहें?
0: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही। तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए। सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको। हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें। अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था। तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर।
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित पांच राज्य हैं
0: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
0: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में। हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का, स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश। तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे। तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहां से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है, बट वहां पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे। तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों, आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से। सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं। तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे, हमारा स्कूल बंद है। तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड,

0: उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा. जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
0: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है, तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा या तो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं, तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से उन्हें बहुत खुशी होती है, तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम आएगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो सम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
0: सर हम हाँ सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है, और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे.
1: तो ये जो, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं. तो ये आप, ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप, ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
0: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं. जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए. तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं.
1: बहुत शानदार आपने बताया. अच्छा जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या, किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
0: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया. हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गई, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं. जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है. तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में. तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं, प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं.
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
0: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है, जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे. तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है.
1: तो ये ट्रेनिंग देते हैं या?
0: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है. तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है. तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है, ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल.
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
0: जी सर बिल्कुल आ रहा है, हमारे काफी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है। इन सबकी पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं। और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसा आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
0: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे डब्लू में एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है, तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
0: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं, और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीवा गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग के चेयरमैन हैं। आपने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MD और एम्स में आप फैकल्टी रहे हैं। नई दिल्ली के बाद आप सीधे UK पहुंचे और वहां आपने लंबे समय तक प्रशिक्षण हासिल किया, एक हाई लेवल का प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद आप अपने देश भारत पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता जी मानव भारती सोसाइटी देहरादून के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। सर, एक शॉर्ट जर्नी जानना चाहेंगे आपकी।
1: राजेश जी, ऐसा है कि ग्रेजुएशन सब लोग MBBS बनते हैं तो उसके बाद MD करते हैं, जो हमने भी किया मौलाना आजाद से। उसके बाद आई जॉइंट एम्स एज ए सीनियर रेजिडेंट, देन आई रियलाइज कि बहुत सारी स्पेशलिटी जो है अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जिसको जनरल, उसके कारण, और ये बहुत कॉमन बीमारियों के साथ लिंक्ड है। तो उसमें एक बीमारी और एक स्पेशलिटी जो हम लोग ने स्टार्ट किया, मैं इससे, इस बीमारी से और इस तरह के विभाग से जुड़ा हुआ हूँ 94 से।
0: yes.
1: तो 94 में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, पहले ये क्या होता है इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके बॉडी में जितनी ऑर्गन है सब वो उसको कंट्रोल की जाती है एक तरह की हार्मोन्स या एक तरह के सब्सटेंस से, जो इम्यून को आदर स्टिमुलेट करते हैं या सप्रेस करते हैं। ये चीज़ जो है ये बैलेंस्ड रहती है नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस आपकी, ये डिसरेगुलेट हो जाती है। तो उसमें इम्यून सेल्स जो हो गया वो हाइपर एक्टिव हो गया। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताएं कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, बहुत सारे कॉमन डिजीजेज हैं, हम उस पर आएंगे जैसे जैसे चर्चा होगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन आम आदमी इसको गठिया जानता है
0: जी,
1: हमने ऑटोइम्यून डिजीज बताया। जब इसमें इम्यून सेल हाइपर एक्टिव हो गए वो बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करते हैं जी। उसमें आपका लंग्स भी आएगा, आपका हार्ट भी आएगा, आई भी आएगा, इसमें मुंह में भी सूखापन, आपके किडनी की इन्वॉल्वमेंट आती है, सारे सिस्टम के। उसी में एक सिस्टम जो है वो है मस्कुलोस्केलेटन, जो अर्थराइटिस, लेकिन मरीज को तो सिर्फ पेन हो रहा है इसलिए आपके पास आ रहा है
0: जी,
1: तो इसलिए वो गठिया समझ के आपके पास आ रहा है। ये आपकी जो सोचने का ढंग था ये 90s में, तो सारे जो अर्थराइटिस के मरीज होते थे वो ऑर्थोपेडिशियन, जनरल फिजिशियंस, पैरामेडिक्स, बहुत सारे इस तरह की उसमें चले जाते थे, और ये कंसेप्ट था ये लाइलाज है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। उनको तो अदर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ही पता नहीं कि हार्ट, ये डिजीज़ हुआ तो इसमें हार्ट डिजीज़ जल्दी आएगी, इसमें लंग सिकुड़ने लगेगा। सो ये सारी जो इंटरेस्टिंग ये पार्ट ऑफ मेडिसिन आ गई, तब ये हुआ कि इसको डेवलप किया जाए। तो हमने जब सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म किया उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से, देन हमने बोला कि बाहर चले जाना चाहिए, कुछ नए थॉट्स आने चाहिए, नहीं तो वो डेवलप नहीं कर पाते। तो हम 4-5 साल बाहर रहे, उसके बाद एम्स में फिर फैकल्टी की तरह हमने ज्वाइन किया एंड वी डेवलप ए डिपार्टमेंट कॉल क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। उसमें हमारे 2-3 कलीग और थे, हमने इसको प्रमोट किया। आप कोई भी डिजीज़ लेंगे इसमें इम्यून मैकेनिज्म सबकी है,
0: सबकी है बिल्कुल।
1: आप सिंपल सा आप देख ले मलेरिया
0: जी,
1: मलेरिया में फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मलेरिया का इफेक्ट ऑटोइम्यून के कारण और दूसरे सिस्टम में आने लगता है। टाइफाइड आप ले लीजिए, टाइफाइड में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आके वो आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशन है इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। अब उसको आप रिकॉग्नाइज करनी है, जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए और हमारे दर्शक को समझाने के लिए रहेगा कोविड
2: जी।
1: कोविड एक इन्फेक्शन था
2: जी,
1: वायरल इन्फेक्शन, ये हम जानते थे। जब ये वायरस बॉडी में गया वो आपको डैमेज किया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने रिएक्ट किया, वो अपना इम्यून सिस्टम को हाइपर कर दिया। तो जो वायरस था वो आपके बॉडी से 5-7 दिन में बाहर चला गया, लेकिन जो हाइपर रह गया, हाइपर वो इम्यून सिस्टम सेल्स, वो आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगे। जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगी, उसके कारण सांस में तकलीफ आने लगी। ये वायरस तो अपना काम करके इनिशिएट करके चला गया और हमारे को ऑटोइम्यून, तो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाएंगे। स्टार्ट वायरस से हुआ, ड्रग से हुआ, किसी चीज़ से होगा, लेकिन ये रूमेटॉइड भी उसी टाइप से है। लूपस एसएलई बहुत लोग सफ़र करते हैं, एसएलई स्क्लेरोडर्मा है, मायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, नर्व्स की डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लूपस किडनी की, लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं। अब इसको अप्रोच करने का दो तरीका, या तो जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व है उसके डॉक्टर देखें
2: जी,
1: जो करते रहे वो इजी है। सांस फूल रही है, हम सांस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको क्या पता कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब सांस के डॉक्टर देखते हैं कि सांस के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यून मैकेनिज्म्स मेडिएट, उसके टेस्ट काफ़ी डेवलप हो गए। अब थोड़ी सी टेस्ट में और भी नई नई चीज़ टेस्ट आती रहती है, जो रिफाइंड करते रहते हैं डिजीज़ को, हम उसको क्लासिफाई करना शुरू किया। सो ये आपकी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी वाली बात। अब रूमेटोलॉजी में क्यों इसको जोड़ा गया? रूमेटोलॉजी में मतलब सिंपल सा कि रूमेटिक आपको पेन हो रहा
2: है।
1: तो जितने भी सिस्टम हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या आएगा?
2: जॉइंट्स पेन।
1: तो आपको ये समझना है कि अर्थराइटिस सब एक तरह का नहीं है, 100 से ज़्यादा तरह के अर्थराइटिस होते हैं। अब उसमें कैसे हम कौन अर्थराइटिस है ये पता करने के लिए ये साइंस को डेवलप किया गया
2: जी।
1: अब ये जो डिजीज है इज़ वेरी कॉमन, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज हमने बोला आपको, हम ऑस्टियो की बात नहीं कर रहे हैं जो एज के साथ है, वो वीएटीआर के
2: जी।
1: रूमेटॉइड, अब देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस मानते हैं कि इंडिया में 1% लोग को होता है
2: जी।
1: 1% का मतलब आप देख लीजिए, आपके पास 140 करोड़ है
2: की पॉपुलेशन,
1: तो 1.4 करोड़
2: जी।
1: आप इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। मैं इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन भी रन करता था, वहाँ पर हमने जब रजिस्टर्ड, अब इसकी डीएम एंड सारी स्पेशलिटी शुरू हो गई है। इनफैक्ट हम मेदांता में हम उनको टीचिंग भी करते हैं, इस नॉट मली की पेशेंट देखते हैं। सो एवरी ईयर वी टेक 2 डीएम, डीएनबी बोलते हैं। तो हमारे पास एट एनी गिवन टाइम 6 डीएनबी स्टूडेंट जिनको हम ट्रेन कर देते हैं सुपर स्पेशलिटी। हम आपकी फिर रूमेटॉइड बढ़ा के एक बातें और बताते हैं, 1.4 करोड़ कौन देखेगा?
2: बड़ी संख्या,
1: बहुत बड़ी संख्या, और ये आपको 3-6 महीने पर देखते रहने का है
2: जी।
1: तो साल में कितनी बार हुआ देख लीजिए, आपके पास जो ट्रेंड रूमेटोलॉजिस्ट एट द मोमेंट इंडिया में है मुश्किल से 3,000 भी नहीं है।
2: तो एक के हिसाब से तो फिर बड़ी संख्या बैठ,
1: समझ ले
2: जी।
1: आप बोलेंगे कि मेरे पास दिखाएं, अब हमारे पास हालांकि हम वेटिंग लिस्ट नहीं रखना चाहते हैं
2: जी,
1: लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत सारे के महीने भर की है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जब आपने इस कोर्स को किया था, इस फील्ड में आप आए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या वजह रही, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप इस फील्ड में आए?
1: मेडिसिन में चैलेंज सभी डॉक्टर चाहते हैं
2: जी।
1: जब मल्टी सिस्टम होता है ना तो चैलेंज बढ़ जाती है
2: जी,
1: और आप एक तरह से एंटीबायोटिक देना वो सब लोग कर लेता है। आपकी इस फील्ड में आने के बाद डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है
2: जी,
1: कि ये इम्यून रिएक्शंस आपके जो लिम्फोसाइट्स है बी सेल की हाइपर एक्टिविटी से हो रही है। अब हमने दवा बनाया कि बी सेल की हाइपर एक्टिविटी कम कर दें, पहले लोगों का हाथ आपने देखा होगा ऐसे करके चले।
2: जी, बिल्कुल,
1: आप यदि ठीक टाइम पर हमारे पास आएंगे हम गारंटी देते हैं होल लाइफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डैमेज हो गया उसको नहीं। तो ये चैलेंज। अब जब रूमटॉइड हमने देखा उनके चेस्ट पर हमने स्टेथोस्कोप रखा, उसमें क्रेपिटेशन आ रहे जो मतलब कि थोड़ी सी लंग्स में सिकुड़न की बात, और ये जो सिकुड़न है जिसमें वो सांस फूल रही है वो सोच रहे हैं कि दम्भे से चल रही है, नो, ये आपकी गठिया से है। अब इसको हम गठिया ठीक कर देते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस सही कर देते हैं, लंग्स भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और गठिया भी, हार्ट की भी साथ में प्रॉब्लम आए वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिसिन में वो आपको मोटिवेट करती है।
2: अक्सर डॉक्टर साहब व्यवहारिक रूप से देखा जाए, आम व्यक्ति की हम बात करते हैं, दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द है, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पेन किलर ले लेते हैं, तो उसका कितना खराब प्रभाव बॉडी पे पड़ता है?
1: देखिए, ये हमारी देश की दुर्भाग्यति है कि भाई आपकी ये सब मेडिसिन ना ओवर द काउंटर आप खरीद लेते हैं। मेडिसिन को जो हम अपने टर्म में वेरी सिंपल वे में डिफाइन करें, मेडिसिन को इज ए यूजफुल पॉइजन। तो ये यूजफुल उस समय तक रहेगा जब तक किसी क्लिनिशियन जिसको नॉलेज है वो प्रिस्क्राइब ना
2: प्रिस्क्राइब ना करे।
1: यदि आप जाके उनसे ले लेते हैं जो कॉमन पेन किलर, चलिए आपकी आती है इटरिकॉक्सिया, निकॉक्सिया एक ब्रांड है, या वॉवरन वेरी कॉमन ब्रांड है, दे कैन किल यू ऑल्सो।
2: अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपने कहा कि ये यूजफुल पॉइजन है। अक्सर एक स्टोरी में पढ़ रहा था तो उस स्टोरी में ये था कि वन पिल टू मैनी उसका टाइटल था। जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि एक एज के बाद शरीर में विभिन्न रोगों में विभिन्न अंगों में रोग आ जाते हैं, कार्डिक है, लंग्स है, और भी तरह के रोग, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, साल्ट लगभग लगभग सेम होते हैं कई दवाइयों के, तो एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य रोगी को क्या करना चाहिए?
1: ये खास करके डेंजरस होता है एल्डरली पॉपुलेशन में, इसको हम अपने टर्म में बोलते हैं पॉलीफार्मेसी।
2: जी, पॉलीफार्मेसी
1: उसके एक डिफिनीशन है। सो ये जो भी पेशेंट हैं, आपको जो भी मेडिसिन दी जा रही है आपको एक फिजिशियन के पास रहना है, हु कैन सी द कार्डियोलॉजी में क्या मेडिसिन चल रही है, यदि आपको किडनी की है, डायबिटी, सब वो करके एक मेन प्रिस्क्रिप्शन बनाए। हमारे यहाँ जो है जो डॉक्टर चाहिए हमारे को फॉर जनरल पॉपुलेशन इज जनरल मेडिसिन वाले, लेकिन हमारे को हार्ड लगता है हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट अपने मेडिसिन के साथ कैल्शियम, विटामिन डी, अदर मल्टी विटामिन, अच्छा यहाँ पर भी दर्द है आप ये भी ले लो, अब वो दर्द वाले दुकान पर गए, इससे क्या हो गया बहुत सारी बात, ऑल दीज ड्रग जितनी आप नंबर करेंगे इंक्रीज वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी साइड इफेक्ट आती है। इसलिए जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन जनरल फिजिशियन लिखता है उनको अपनी डिजीज जिसके लिए वो गया है साथ में उनको लिखनी चाहिए कि इनको और कौन सी बीमारी है।
2: जी बिल्कुल।
1: अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हम पेन किलर नॉन स्टॉप नहीं दे सकते, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं दे सकते, जिसको किडनी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो कंट्रा इंडिकेटेड।
2: क्या आपको लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस है?
1: ये डेवलप हो रही है, लेकिन दो चीज़ें इसमें हैं, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को आगे आना होता है। वेरी सिंपल, आपके पास पेशेंट बहुत हैं, डॉक्टर के पास सो कॉल्ड टाइम नहीं है। अब जैसे मैं देखिए यूके में जब प्रैक्टिस करता था होल डे में सिर्फ 5 मरीज देखता था, अब यहाँ पर कोई बिलीव तो नहीं करेगा कि 5, फिर आपकी घर कैसे चलेगी, रोटी कैसे आएगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपकी टाइम जो है वो कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे काम हुआ आप कटिंग द कॉर्नर करने लगते हो। अब यहाँ पर जो भी एक कोई अच्छे प्रैक्टिशनर आप देखो दिन भर में वो 40 मरीज देख रहे हैं कम से कम, उससे भी ज़्यादा देखते हैं।
2: जी,
1: 40 मरीज को 8 घंटे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए उस मरीज पर कितना टाइम आपने दिया।
2: बिल्कुल, उसी सवाल पे मैं अभी आ गया हूँगा।
1: तो इसमें क्या है, कि जो एक दोनों साइड में प्रॉब्लम है, पेशेंट साइड में क्या प्रॉब्लम है कि दे गो फॉर द फेमस डॉक्टर, अब सब लोग फेमस डॉक्टर के पास जाएंगे तो भीड़ तो रहेगी ना, वो रात के 2 बजे तक मरीज देख रहा है, वो आपको 2 मिनट दे रहा है। हमको वो डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको वो डॉक्टर चाहिए जो आपकी बात सुन रहा है, 10 मिनट टाइम दिया, उसके बाद वो भी ब्लेम इज कि वो भी आपको ठीक से ट्रीट करेगा, लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश डॉक्टर है वो तो फेमस हो गए, इसलिए गांव से भी लोग आएंगे कि फलना के यहाँ जाने का है जी। तो वो वहाँ पर रात के 2 बजे का टाइम लेके लगाएंगे, वो बेचारा डॉक्टर सोते हुए, वो भी आई एम नॉट सेइंग कि ही इज डूइंग रॉन्ग, लेकिन उसे लगता है इतने मरीज हैं हम कुछ भी भला कर सकते हैं, हम करें
2: जी,
1: लेकिन टाइम तो कम होता चला गया।
2: इस समय डॉक्टर्स की कमी है, अर्थराइटिस की बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है, और आप जैसा कि आपने बताया कि यूके में 5 मरीज पर डे, पर यहाँ तो लिस्ट वेटिंग बहुत ज़्यादा है,
1: तो इसलिए तो हम यहाँ पर थोड़े से इनोवेट होते हैं, वहाँ पर एक मरीज में सब कुछ करनी होती है, आधा घंटे का टाइम उनको देना होता है, सारा कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मरीज की हम उतनी डिटेल में नहीं लिख रहे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं, सेकंड है वो रिकॉर्ड हम पेशेंट को दे देते हैं जी। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट वो कुछ समय के बाद घर शिफ्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कहीं गया, बाढ़ आ गई, रिकॉर्ड गई, यही प्रॉब्लम है। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हमने आपको जो रिकॉर्ड दिया ओपीडी में उसकी एक कॉपी हमने अपने कंप्यूटर पर, इसको हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाला, वो आपका खाली UHID नंबर रहे, हम उससे निकाल के कि आपके पहले के क्या रहे, वो ये सिस्टम जो है वो कॉर्पोरेट में है, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते।
2: जैसा कि आपने अभी बताया, ये मैं बहुत पहले भी पढ़ा था कि मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटलाइज कर देना, जैसे कॉर्पोरेट में जैसा आप बता रहे हैं वेदांता में होता है सर ये सब, लेकिन प्राइवेट में और जगह जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंने नहीं देखा है।
1: देखिए दो सिस्टम है, जो इन पेशेंट है उसके रिकॉर्ड बाय लॉ हमें रखनी होती है, तो इन पेशेंट एडमिट हुए आपके रिकॉर्ड रहेगी, उसके एक 10 साल का है 5, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती पेपर रिकॉर्ड के लिए, डिजिटलाइज कर देने पर आपको बढ़ गया। हम जो बातें कर रहे हैं वो OPD रिकॉर्ड की
2: जी, OPD रिकॉर्ड
1: जो कि आप मेजॉरिटी का आप देखेंगे वो लिख के आते हैं, उस पर 4 चीज़ खाली दवा लिखी हुई है और साइन करके उन्होंने दे दिया, डॉक्टर ने भी नहीं रखा है
2: जी।
1: इमरजेंसी में भी वो मरीज फ़ोन करता है डॉक्टर को, उसे आइडिया नहीं, अनलेस कि वो उनके एरिया का रेगुलर आ रहा हो, क्योंकि वो ट्रेस्ट नहीं कर सकता ना कि हम इसको क्या कर रहे थे। तो ये सिस्टम अब्रॉड बहुत सॉलिड है, वो आप कॉल करेंगे हमारा, हम करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं जो इमरजेंसी में, क्योंकि हमारे मरीज ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है 1 बजे आपको, तब तक हमारा स्टाफ उनका सारा रिकॉर्ड निकाल के हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है।
2: क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स की एक लंबी लाइन है, डॉक्टर के पास समय नहीं है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मेडिकल हिस्ट्री भी डिजिटलाइज हो जाए और एक क्लिक पर पता चल जाए कि पेशेंट का अब क्या हाल है।
1: ये बहुत कुछ शुरू होने जा रहा है कि आपकी जो कार्ड आती है ना, कार्ड में आपको हमने दिया और उसको उसमें अपलोड करके आपको कार्ड पकड़ा दिया
2: जी।
1: हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि आपको हम 80% तो इंडिया को विलेज में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अमाउंट अभी भी 60 के आसपास है।
2: बिल्कुल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल है।
1: अब वो जब आते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच डॉक्टर की है। आपने जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें 1 मिनट भी आप एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, सेक्रेटरी रख लीजिए, और वो कुछ नहीं आता इनका नंबर और स्कैन करके आप सिस्टम पर डाल लीजिए कम से कम खोल के। गवर्नमेंट ये फोर्स कर रही है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इज़ आल्सो ट्राइंग कि जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो टाइप होना चाहिए। अभी आपने सवाल नहीं पूछा, नहीं तो आप नेक्स्ट पूछने वाले हैं
2: जी, जी, जी।
1: कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो तो कोई पढ़ नहीं पाता।
2: पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो उसमें बहुत मिस्टेक है। अंडर दिस डॉक्टर शुड आल्सो बी नोइंग, दे नो, एवरीबॉडी नोज, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड कि भाई यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग, दिस इज नॉट कि जी आपकी गलती से भाई 2000 रुपये नुकसान हुआ, 1 लाख रुपये नुकसान, दिस इज पेशेंट वी आर टॉकिंग।
2: फिर सबसे बड़ा सवाल तो जीवन का है रुकसा।
1: हाँ, इसलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आ रही है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट,
2: बहुत इम्पोर्टेंट, और वो हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है।
1: सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया है, सिस्टम, गवर्नमेंट इंडिया इज डूइंग ग्रेट जॉब, वनली थिंग है कि इम्प्लीमेंट करने में, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर का शहर में ज़्यादा है, गांव में कमी, तो उसके बाद हमको लैब स्टैंडर्डाइज करना है, वो सबका उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, NABH करके ना कोई अच्छे लैब को, बिना उसका वो करते नहीं है,
2: नहीं,
1: वो देख के उनकी ऑडिट होती रहती है। सो दीज थिंग्स की अब किसी की हीमोग्लोबिन एक जगह से आपकी सिंपल 11 आई, एक जगह से 5 आ रही है,
2: डिफरेंस आता है उसमें,
1: तो अब आपका अब डॉक्टर बेचारा परेशान कि अब किसकी बातें माने क्लिनिकल कितना भी कर ले, लेकिन लैब में दिख रहा है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से हम गठिया पर आते हैं। अक्सर जोड़ों में हल्का सा भी दर्द होता है तो एक लोग सामान्य तौर पे कहते हैं गठिया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसे ही कुछ कहते हैं। फिर कहते हैं कि साहब प्रोटीन बढ़ गया है आपका, अरहर की दाल मत खाइए। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि हल्का सा दर्द होने पर भी क्या गठिया मान लिया जाता है या जोड़ों का दर्द?
1: देखिए, कोई भी जॉइंट्स पेन हुआ, अर्थराइटिस कर लें, दैट्स अ गठिया, वेरी वीक वर्ड में। गठिया बहुत तरह की है, यूरिक एसिड की गठिया इज डिफरेंट, उसमें ये सारी बातें होती हैं, उसको हम गाउट बोलते हैं, वो एक तरह की गठिया
2: होती है,
1: ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है उसका। लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड रेज रहने से और थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ गाउट बोले, नहीं
2: जी,
1: वो नहीं होता। यूरिक एसिड आपके नॉर्मल बॉडी में वो आपका बढ़ता है एज के साथ, लेडीज में कम रहेगी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, मेनोपॉज के पहले वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का काम, मेल में थोड़ा ज़्यादा, जो इंटेलिजेंट मेल हैं उसमें यूरिक एसिड थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम यू बोलते आप इंटेलिजेंट हैं 7.6 यूरिक एसिड को भूल जाइए। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रखते हैं, जो मोटे हैं, डायबिटीज़ कार्डी, उसमें यूरिक एसिड वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जनरल बॉडी की कंडीशन इज़ नॉट गुड, किडनी इन्वॉल्वमेंट आने लगी है, यूरिक एसिड ऊपर होने लगा है। तो सिर्फ यूरिक एसिड के बेसिस पर हम गठिया गॉट नहीं बोलते,
2: नहीं कह सकते। सर, आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें।
1: भाई, मैं मुकेश का फैन हूँ
2: सर,
1: ठीक है ना, हमारे टाइम में मुकेश का, उनके सारे गीत अच्छे हैं, लेकिन गीत में एक पूरब पश्चिम का गाना, ठीक है, यदि आपके पास हो
2: जी सर,
1: तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
2: तो हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है पूरा पश्चिम फिल्म का एक गीत,

0: एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो केदार में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, 7 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ रहे। उसमें मैं पढ़ रहा था कि जुवेनाइल टीनेजर्स चिल्ड्रन, जबकि हम लोगों की समझ में अभी तक सामान्य तौर पर यह है कि ये एक एज की बीमारी है, ये एक एज का रोग है, तो क्या बच्चों को भी और जो जुवेनाइल्स हैं उनको भी रोग होता है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दूं कि ये वेबसाइट मैं मेंटेन नहीं करता तो वो कौन किसने बनाया, लेकिन ये बात हम सब मीटिंग में बोलते हैं
0: जी।
1: जो अर्थराइटिस और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़, वो किसी एज को अफेक्ट कर सकता है, उसमें जॉइंट्स भी जैसे हमने बताया। तो आपकी जो 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा पैदा लिया, उसके बाद उसको नियोनेटल बोलते हैं, उनको भी अर्थराइटिस हो सकती है। क्या कमी है कि उसको पकड़ना
0: जी, बिल्कुल।
1: यदि आप पकड़ लेते हैं बच्चों में, हम जो जुवेनाइल बोलते हैं कि वो 16 साल के कम बच्चा
0: जी,
1: क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, उनका ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब कुछ वो देख के चलना होता है
0: जी।
1: उनका अर्थराइटिस जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में हम क्लब करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हैं। सो इतनी अब डेवलप हो गई कि इसको पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजी के पास भेजते हैं,
0: बच्चों का जो है,
1: बच्चों का ही वो 16 साल से कम करते हैं। देखिए, अर्थराइटिस को हम डिवाइड करें ना, जो आम धारणा जो आपने बताया कि वो ओल्ड एज में, वो उम्र के साथ वियर टीयर के कारण, घिसने के कारण, इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं
0: जी।
1: जो कॉमनली आपका घुटने में, बैक में, आपको क्योंकि आपका घुटना, आपको 50 साल 60 साल काम किया, रगड़ खरा, मिसयूज आपने किया, जमीन पर पालथी मार के अभी तक बैठ रहे हैं
0: जी।
1: तो उठेंगे तो थोड़ा लगेगा
0: जी।
1: तो ये डिफरेंट है। जो ऑटोइम्यून के कारण है उसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं
0: जी।
1: उसमें क्या है कि जॉइंट्स में अचानक सूजन आ जाती है, आप जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे, हाथ रख के देखेंगे वो गर्म है, जैसे कि जोड़ में आग लगी हुई है, ठीक है। सुबह उठेंगे एकदम जाम हो गया है, थोड़ा चलेंगे चलने लग जाता है। उसकी बहुत तरह की वेरियंट है, उसको पैटर्न देख के हम रिकोगनाइज करते हैं। बच्चों में जो हो हमने क्लासिफाई खाली कर दिया कि जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो यदि किसी को जोड़ों में, एक जोड़ या दो जोड़ बच्चों में सूजन आ गई है, मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करें। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम बच्चे को उसी तरह से नॉर्मल रखेंगे, लेकिन आपको इनिशियल फेज में आना होगा। यदि आप डैमेज हो गया तो फिर तो डैमेज हो गया।
0: आपके पास जब पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, तो किस स्थिति में आते हैं, क्या?
1: सभी तरह के आते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए लोगों को अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो गांव से भी आते हैं वो आपके नाम सुन के आते हैं कि आपने फलना को ठीक कर दिया, आप मेरे को भी कीजिए। वो थोड़ा लेट हो जाता है, जो डिफॉर्मिटी हो गया जॉइंट्स उसमें, लेकिन उसमें भी काफ़ी फर्क होगा। ध्यान रखेंगे, हमने खाली अर्थराइटिस नहीं ठीक करनी है, दूसरे सिस्टम को भी ठीक
0: करना है,
1: तो उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि डैमेज हो गया, हम 100% बैक नहीं, लेकिन कंट्रोल फिर भी कर लेंगे कि डैमेज का जो प्रोसेस है वो वहाँ रुक जाए और डैमेज ना हो।
0: जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे 7 बातें आपने बताई हैं, जुवेनाइल की मैं बात कर रहा हूँ लगातार और चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कितनी अवेयरनेस है बच्चों को लेकर और किशोरों को लेकर?
1: हम आपके स्टूडियो में स्कूल में बैठे हैं
0: जी,
1: हम स्कूल में कैंप लगवाते हैं, उसमें टॉक देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब प्लस मदर एंड फादर, आजकल तो बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, एंड गुड थिंग अबाउट द सोशल मीडिया कि ये सारी चीज़ सबके पास है,
0: सबके पास है।
1: ओनली थिंग ये ओरिएंटेशन अपने बच्चों में देखनी कि यदि वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा रहा, इसका कि चोट लग गया, ये सब नहीं होता। अब देखें, स्कूल जाने से कतरा रहा है, वो यदि घुटने में चल रहा है वो चल नहीं पाएगा, सुबह उठेगा हिल नहीं पाएगा, तो आपका काम है, क्योंकि बच्चे आप पर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो आपको लेके नज़दीक के सेंटर में फिजिशियन को नहीं है, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट कम होंगे आपके शहर में, तो ऑर्थोपेडिशियन वो गाइड कर देंगे कि भाई आप इनको आगे दिखाओ, क्योंकि दवा इसमें थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, लेकिन दवा सस्ती भी है महंगी भी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचने कि ये दवा महंगी है, दवा महंगी की बता दें कि इसमें कुछ दवा हम लगाते हैं जिसकी एक डोज की कीमत 1,00,000 रुपये है, और बहुत सारी दवा है जिसकी कि 2 रुपये है
0: जी, बहुत।
1: तो वो हाँ, तो वो डिपेंड करता है क्या पेशेंट्स अफोर्ड कर सकता है ये, क्योंकि जितनी जितनी नई दवा आती जाएगी ना, कॉस्ट ऊपर, फिर जैसे यूज होता है धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो 1,00,000 रुपये वाली दवा अब आपको 30,000 में मिलने लगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 10,000 में मिलने लगे, तो ये सारे वैरिड है, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट लिखे तभी इसको यूज करनी है।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जो कमर दर्द है, कमर में जो दर्द होता है वो बहुत आम है, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला दर्द सामान्य पीठ दर्द से कैसे अलग होता है?
1: वेरी गुड। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो इसमें फीचर्स जो हमने बताया, सुबह उठेंगे पूरा जाम रहेगा
0: जी,
1: ठीक है ना, और उसके अलावा मूवमेंट करने में दिक्कत है, जो कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद नहाया आपने तब शुरू होता है, बैक पेन बहुत कॉमन है, वो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कम होता है। सेकंड जो है, इसके साथ कुछ फीचर्स आते हैं, ये एक सेट पैटर्न अब जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, बैक का आपने बताया वो बटक जॉइंट्स में कॉमनली होता है, उसके बाद दूसरे घुटने वगैरह में, एंकल में, ये सब में भी आता है, वो आपके कॉमन जॉइंट्स में, एंकल में सूजन नहीं आएगी। तीसरा है इसकी, जैसे हमने बताया दूसरे सिस्टम में किसी को बार बार आँख में लालीपन आ रहा है, ये ऑटोमिन वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, उसको HLA-B27 से हम कोरिलेट करते हैं, उसके ट्रीटमेंट आप आए हम आपको 100% कंट्रोल रखेंगे। इसकी जो अनदर थिंग जो हम इसको देखते हैं, ये कम एज में होता है, एज इज नो बार, ध्यान रखेंगे, ये 16 साल 18 साल 20 यंग बच्चों में होता है, एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी सी फैमिली में रन करती है, यदि आपके मामा चाचा को है आपको होने का थोड़ा चांस है। इसमें एक जीन मार्कर हम लोग देखते हैं, इसको HLA-B27 बोलते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखनी है कि HLA-B27 सबको पॉजिटिव हो इसका मतलब अर्थराइटिस हो, ये एकदम नहीं है। एक एग्जांपल दे दूं कि इंडिया में HLA-B27 पॉजिटिविटी नॉर्मल पॉपुलेशन आम आदमी में 6-8% है, तो सबको अर्थराइटिस तो नहीं हुआ,
0: नहीं है,
1: लेकिन जब भी आपको शक लग रहा है हमें दिक्कत है, यंग एज में हुआ है, कोई और रीज़न नहीं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो बहुत इजी है, एग्जामिन करके एक्सरे वगैरह डॉक्टर करा के आपको बता देंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है, आप नॉर्मल रहेंगे होल लाइफ, छोड़ देंगे तो इसमें टेंडेंसी रहती है हड्डी जुट जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम पेशेंट्स आप मिलते रहे, क्या लगता है कि जो पेशेंट हैं बीच में छोड़ भी देते हैं बहुत सारे, तो वो नंबर कितना उसका परसेंटेज होगा डॉक्टर साहब?
1: ये डिपेंड करती है आपकी काउंसलिंग में, देखो इंडिया आप कुछ ही बोले हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी रिसोर्स लिमिटेड है, आपके गांव के मरीज पैसे लगते हैं, ठीक है ना, कुछ भी है, अब बहुत जगह आपको नॉर्मल अपने फैमिली लाइफ के लीड करने के पैसे नहीं है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाता है वो लेडीज हो जाती है, क्योंकि मेल को सब देखते हैं ना कि अर्न करेंगे, यदि ये घर में बैठने लगे तो कैसे काम चलेगा, तो वो आपको देखनी है, उनको इनक्रेज करनी, उनकी फॉलोअप करनी है। हम अपने पास जो इस तरह के क्रिटिकल और रेयर डिजीज़ वाले मरीज़ जो देखते हैं उसकी लिस्ट होती है, यदि वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट भूल जाता है उसको कॉल की जाती है, लेकिन ये सभी लोग नहीं कर पाते
0: नहीं करते।
1: तो इसमें आपकी काउंसलिंग जब आपने पहली बार देखा है उसको कैसे किया है, और ये डॉक्टर को वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसको देखा और महंगी दवा 1,00,000 रुपए वाली दी, कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: आप 2 रुपए 6 रुपए 10 रुपए वाली दवा से भी वैसे ही एक्टिवली ट्रीट कर लेंगे। तो ये आपको देख के बहुत लोग इंडिया में, अब थोड़े लोग रिच हैं, वो आपके इंटरनेट से पढ़ के आते हैं कि मेरे को बायोलॉजिक्स चाहिए, वो महंगा से फर्क नहीं पड़ता आप मेरे, वो ठीक है। तो सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है और सबकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसमें कंप्लायंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम क्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये कंप्लायंस जो आपने मुद्दा उठाया ना, कि कंप्लायंस मतलब कि वो दवा टाइम पर नहीं ले रहे हैं, आना छोड़ दिया, दैट्स द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिसिन तो बहुत सिंपल सी भी हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, वो उतना नहीं। मरीज को, यदि कोई मरीज सुन रहे हो, यदि आपको लगता है फाइनेंस के कारण हम ये ट्रीटमेंट परस्यू नहीं करें, टॉक टू योर डॉक्टर, वो कम कर देंगे, दूसरी दवा दे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आप छोड़ देंगे बाद में।
0: जैसे आप तो फॉलोअप कर लेते हैं पेशेंट के साथ, की बातचीत हो जाती है कि भाई नहीं आ रहे हो आप, कॉल कर लिया। लेकिन अधिसंख्यक लोग जो है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं, तो वहां तो फॉलोअप भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास आए, पर्चा लिखा, गए, फिर इसके बाद पेशेंट और डॉक्टर का संबंध खत्म।
1: इसलिए राजेश जी, आपके चैनल से हम चाहते हैं कि आप लाइव शो उनसे मेरे को कनेक्ट कराएं। हम करते रहे ऑल इंडिया रेडियो पर, उसमें क्या है, वो कनेक्ट होते हैं, वो सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट की कमी है सब लोग, और जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं बड़े शहर में हैं या 2 टायर सिटी या 3 टायर उसके नीचे नहीं होते हैं। तो उनसे खाली एक बार वो कनेक्ट हो जाए ना, दे विल टेक केयर ऑफ। तो आप जब लाइव शो कराते हैं, आप अपने गांव के लोगों को हम प्रेफर करें।
0: टेलीमेडिसिन कितना सक्सेस है डॉक्टर साहब?
1: वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, तो आपके, क्योंकि आपका जो माध्यम है ये बहुत लोग को जाएगा
0: जी।
1: हमारी जो टेलीमेडिसिन है 1-to-1, तो वो जो अपेयर होके मेरे से नहीं आ सकते हैं, तो वी डू वीडियो, दैट्स ए टेलीमेडिसिन हम करते हैं, लेकिन 1-to-1।
0: बिल्कुल,
1: वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान रखें, 1% ऑफ द,
0: दूसरा
1: आपको कैलकुलेशन बता दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड है कि हम आपके माध्यम से और लोगों की तरफ पहुंचे।
0: डॉक्टर साहब, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली और फिर यूके का सिलसिला पूरा, वहाँ की अलग व्यवस्था है, किस तरह से देखते हैं सफर को?
1: बहुत डिफरेंट है। मौलाना आजाद से हमने MD किया, लेकिन हम उसके बाद एम्स में ही थ्रू आउट रहे हैं। हमने एम्स में 1994 में ज्वाइन किया था, सीनियर रेजिडेंसी, पुल ऑफिसर, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि हम 97 में हम यूके चले गए, एंड 2001 में आके हमने फिर एम्स में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। उसके बिफोर हम ज्वाइनिंग मेदांता जब ज्वाइन किया, उसके पहले हम एम्स में थे, वहाँ से छोड़ के इधर हम चले हैं। वहाँ पर ना पेशेंट का लोड नहीं है, पेशेंट आपकी बातें समझते हैं, केयर करते हैं। सेकंड थिंग है कि हेल्थ केयर में एक पिरामिड का जोर होता है, सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता, यू नीड टू हैव ए पैरामेडिक्स, यू नीड टू हैव ए काउंसलर, ये सब वहाँ पर वेल डेवलप्ड है। अब हमारे को फिजियो को भेजने का है, वो हम कर दिया, फिजियो घर जाके आपकी एक्सरसाइज कराता है, ये यहाँ पर नहीं हो पाता। यदि आपने फिजियो को रेफर किया तो वो कि ये तो ऐसे ऐसे बताया नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये लोग ऑर्थोटिस्ट हैं, ये सारे वहाँ पर। प्लस यूके में एवरीथिंग इज अंडर NHS,
0: तो
1: पेशेंट इज नॉट पेइंग एनीथिंग। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में मरीज जाना पसंद नहीं कर

0: बेनिफिट ऑफ दैट सिस्टम, यू स्टार्ट थिंकिंग लैटरली, आप रिसर्च पर चले जाते हैं। यहाँ पेशेंट लोड से एम्स में रहा, हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी पब्लिकेशंस हैं
1: जी,
0: वो आपकी है। अब हमारी, चूँकि मैं हमेशा टीचिंग में रहा
1: जी,
0: तो मैं, तो मेरा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, दे आर डूइंग डी एम अंडर मी डी एन बी।
1: जैसा आपने अपना रूटीन बताया कि सुबह 8:30 बजे से और फिर शाम 7:30 बजे तक, एक लाइफ स्टाइल, क्योंकि लाइफ स्टाइल से जुड़ी ही डिजीज भी है। क्या एक डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, क्या डॉक्टर भी खुद में उस लाइफ स्टाइल को जी पाते हैं? क्योंकि टेंशन भी बहुत है, बहुत सारा स्ट्रेस है।
0: ये आपकी जो हमने टाइम बताया 8:30 to 6:30, जब मैं घर में इंटर करता हूँ, उसके बाद ना मैं कोई मरीज देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद भी करते हैं
1: जी।
0: तो आप तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, रिचार्ज करने के लिए ह्यूमन को चाहिए टाइम। सो हमारा चूँकि सिस्टम है, और भी लोग हैं हमारे साथ बैठते हैं, तो हम उनसे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, रेजिडेंट हैं, जूनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है हमारे साथ, आपका कहना। तो हम बीच बीच में हॉलीडेज लेते हैं, संडे को मैं कुछ नहीं करता, संडे मॉर्निंग में वॉक करते हैं वगैरह, वी ट्राई वॉट एवर वी कैन डू। लेकिन एक बार यदि आप इंडिया में चैम्बर में बैठे हैं, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बाहर खड़े हैं
1: जी, स्थिति
0: तो, लेकिन ठीक है, मैनेज हो रही है, आप उसको आदत हो जाती है। अब हमारे यहाँ बहुत फेमस है, मैंने ये फेमस किया है कि मेदांता के डॉक्टर लंच नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं है।
1: तो वही मैं बात करूँ कि क्या खुद फॉलो कर पाते हैं?
0: नहीं, होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैडम का रोज होता है कि अरे 4 बजे खाना खा रहे हो
1: जी,
0: कौन सा तरीका है? चाय पर आप पूरी ओपीडी चल रही है सुबह से 2 बार 3 बार, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, विच बैलेंस, कि मरीज आता है आपके इलाज से खुश होके गया, ठीक होके गया, दैट्स योर सेटिस्फैक्शन।
1: लोग कहते हैं कि जैसे बीपी की दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, या गठिया की बात हम करते हैं, कहते हैं कि पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी, क्या ये सही बात है? लोग
0: ब्लड प्रेशर एज के साथ जो होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कर लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं। जो सेकेंडरी एज के साथ होती है वो खाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको एथरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज, ये सब डेवलप करता रहेगा। तो अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करनी है। अर्थराइटिस डिपेंड करता है किस तरह की अर्थराइटिस है, ट्रीटेबल है, हम नहीं बोलते, हम किसी को नहीं, इवन ओल्ड एज वाले को हम दवा नहीं देते हैं कि ये डिजनरेटिव एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन की आपको हमने डेफिनेशन बता दिया, इज यूजफुल पॉइजन,
1: यूजफुल पॉइजन,
0: वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो।
1: अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जो, क्योंकि फास्ट रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक वगैरह और बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या है डॉक्टर इसके पीछे?
0: इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे ओवर द काउंटर पेशेंट ही गए, भाई बुखार लगा है थोड़ा सा, मेजॉरिटी ऑफ दिस फीवर ऑफ वायरल फीवर, वायरल फीवर में बैक्टीरिया वाली मेडिसिन कैसे काम करेगी, वो अपने आप 4-5 दिन में चली जाती। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बैन है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। सेकेंड थिंग ऑल्सो है कि डॉक्टर साइड से बुखार है एंटीबायोटिक नहीं, आपको लिखने की, बाहर के कंट्री में आप एंटीबायोटिक नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ पर क्योंकि आपकी ओवर द काउंटर अवेलेबल है
1: बिल्कुल,
0: वो आप देख लेंगे, एक डॉक्टर ने लिखा 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक इनकी भी खाई, मूव करके कहीं और, उन्होंने हायर एंटीबायोटिक सो को, और हायर का मीनिंग क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने बदल के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी ने यदि डिजीज का नाम नहीं लिखा है, देन हाउ यू कैन राइट एंटीबायोटिक्स? आप पहले आप डायग्नोसिस लिख दीजिए कि आप, वो डायग्नोसिस सही है नहीं है, मोस्ट लाइकली आपकी निमोनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन, आप लिखें चेस्ट एक्सरे, तब ना आप एंटीबायोटिक देंगे। अब जैसे लूज मोशन से, मेजॉरिटी लूज मोशन्स आर

0: सेल्फ लिमिटिंग। उसमें क्या करनी होती है, आप इलेक्ट्रोल पाउडर दिया, नॉर्मल फ्लूड मेंटेन रखें, अपने आप वो दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी। खाने पीने में ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन मोर इम्पॉर्टेंट। एंटीबायोटिक सब में लूज मोशन में नहीं दी जाती
1: है, सब चल रहा है
0: ये, बिकॉज आपकी जो सबसे चीप है इज द मेडिसिन। आप यदि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है पानी पियो ठीक हो गया, आप तुरंत चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास, इसने तो दवाई नहीं लिखा है
1: जी,
0: भूल गया दवा लिखना, वो दो मिनट से लिख देगा फिर
1: कि डॉक्टर साहब ने तो पूछा ही नहीं, ढंग से बात ही नहीं की है
0: क्योंकि अब समझने की बात है कि ये क्या है। तो बड़े डॉक्टर के पास जाने पर कम मरीज दवा लिखते हैं।
1: एक अच्छे व्यवहार का, डॉक्टर के एक अच्छे व्यवहार का
0: देखिए
1: कितना असर पड़ता है सर पेशेंट पर।
0: प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अपने जूनियर कलीग को सिखाते हैं इज इन द ऑर्डर ऑफ ABC।
1: ABC मीन
0: ए स्टैंड फॉर कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, दैट्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज ए, बी इज बिहेवियर,
1: मोर
0: बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, and C comes is the competence of the doctor. So is not the bara doctor, I look for the safe doctor. Safe doctor ko ye idea hona chahiye ki bhai ye mere se nahi ho raha, hamare ko dusre colleague ki opinion le leni hai, hum ye dawa nahi use kar sakte hain, hamare ko ye jabasti dawa nahi likhni hai, ye सब जगह फिट होती है। तो बिहेवियर ये तो एबिलिटी, आप बात सुनोगे, आपकी जब आप बात सुनने लगते हो पेशेंट की, आपकी बिहेवियर दैट मीन्स यू गॉट ए पेशेंस, यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट। पेशेंट आपको जब तक बोल नहीं रहा, आप लिखना शुरू कर दोगे, फायदा नहीं है।
1: यही बात मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि 9 से 10-11 सेकेंड बाद इंटरप्ट कर देते हैं डॉक्टर पेशेंट को,
0: इसका इस टाइम प्रेशर हमने बताया। मेरे को ओपीडी जब चलती है, मेरे को वॉशरूम तक जाने नहीं देते हैं, अब खत्म करनी है ना। अब हमने वहाँ पर 20 अपॉइंटमेंट्स होल डे का दिया हुआ है, वो पैरवी लग लग के हमारे को वो 40 हो जाती है, अब कैसे एडजस्ट करें, टाइम तो लिमिटेड है
1: जी।
0: तो उसमें बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ बोलते हैं जो रिलेवेंट नहीं होता। तब उसमें इंटरप्ट के, तो ये जो 9 वाले हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानते
1: जी,
0: क्योंकि वो फिर वो अपने घर की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर हमारे को, क्योंकि दूसरों को
1: भी देखना है।
0: UK में डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि हमारे को उनके फैमिली के बारे में भी जाननी होती है, तो बोलते हैं हम सुनते हैं। यहाँ पर हमारे को टाइम लिमिटेड है,
1: लिमिटेड है,
0: तो अच्छे डॉक्टर पोलाइटली टॉपिक
1: चेंज कर देते हैं,
0: वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन पोलाइट। लेकिन यू शुड आल्सो रिमेंबर कि डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, फ्रस्ट्रेशन उनके अंडर में भी आती है।
1: चलते चलते डॉक्टर साहब एक करियर से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। जो युवा डॉक्टर आज MBBS या MD के बाद अपना रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में रूमेटोलॉजी की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, क्या स्कोप है और क्या चुनौतियाँ हैं?
0: ये तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया, यू लुक एट वन डिजीज, आपकी कितनी पॉपुलेशंस हैं डॉक्टर का नंबर भी आपको बता दिया
1: जी।
0: अब सप्लाई डिमांड में तो गैप है, तो अब इसमें तो सवाल ही नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें तो जब क्योंकि अभी मैं बता दूँ
1: स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, स्कोप तो बहुत है डॉक्टर साहब,
0: स्कोप बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले के टाइम में कार्डियोलॉजिस्ट लोग बनना चाहते थे, तो ये पता चलता था कि अभी ट्रेंड क्या चले, जब इनकी DM की एग्जाम जो नीट सुपर स्पेशलाइज उसमें कि टॉपर कौन सा रैंक में कहाँ जा रहा है। अब रूमेटोलॉजी अच्छे सेंटर में 200 ऑल ओवर इंडिया की 200 के नीचे नहीं जाती, ऊपर चली जाती है, तो डिमांड समझ लें क्योंकि सीट कम है, तो इसलिए एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेशलिटी बिकॉज ये इतनी जल्दी एक्सपेंड होती जा रही है, इतनी नई मेडिसिन आ रही है, इतनी रिसर्च हो रहे हैं, एंड एवरी ईयर इट्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग। तो इसको हम तो सबको इनक्रेज, हमने मेडिसिन छोड़ के हमने रूमेटोलॉजी डेवलप की, ये नई चीज एस्टेब्लिश करनी है। अब कार्डियोलॉजिस्ट नेफर ऑलरेडी लोग काफ़ी हैं, और उसमें भी आधा चीज हम कर लेते हैं, क्योंकि कार्डियो हार्ट में हार्ट वीक क्यों हुआ वो बता सकते हैं इम्यूनोलॉजी है कि कौन सी बात है।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से, और बहुत सारी जानकारियां सर आपसे मिली, करियर से जुड़ी भी जानकारियां भी मिली, और डॉक्टर्स के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे थे कि हमें लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर का बिहेवियर होना चाहिए, दवाइयों को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अमूल्य जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीवा गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग के चेयरमैन हैं। आपने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MD और एम्स में आप फैकल्टी रहे हैं। नई दिल्ली के बाद आप सीधे UK पहुंचे और वहां आपने लंबे समय तक प्रशिक्षण हासिल किया, एक हाई लेवल का प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद आप अपने देश भारत पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर राजीव गुप्ता जी मानव भारती सोसाइटी देहरादून के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। सर, एक शॉर्ट जर्नी जानना चाहेंगे आपकी।
1: राजेश जी, ऐसा है कि ग्रेजुएशन सब लोग MBBS बनते हैं तो उसके बाद MD करते हैं, जो हमने भी किया मौलाना आजाद से। उसके बाद आई जॉइंट एम्स एज ए सीनियर रेजिडेंट, देन आई रियलाइज कि बहुत सारी स्पेशलिटी जो है अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जिसको जनरल, उसके कारण, और ये बहुत कॉमन बीमारियों के साथ लिंक्ड है। तो उसमें एक बीमारी और एक स्पेशलिटी जो हम लोग ने स्टार्ट किया, मैं इससे, इस बीमारी से और इस तरह के विभाग से जुड़ा हुआ 94 से।
0: yes.
1: तो 94 में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, पहले ये क्या होता है इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके बॉडी में जितनी ऑर्गन है सब वो उसको कंट्रोल की जाती है एक तरह की हार्मोन्स या एक तरह के सब्सटेंस से, जो इम्यून को आदर स्टिमुलेट करते हैं या सप्रेस करते हैं। ये चीज़ जो है ये बैलेंस्ड रहती है नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस आपकी, ये डिसरेगुलेट हो जाती है। तो उसमें इम्यून सेल्स जो हो गया वो हाइपर एक्टिव हो गया। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताएं कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, बहुत सारे कॉमन डिजीजेज हैं, हम उस पर आएंगे जैसे जैसे चर्चा होगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, लेकिन आम आदमी इसको गठिया जानता है
0: जी,
1: हमने ऑटो इम्यून डिजीज बताया। जब इसमें इम्यून सेल हाइपर एक्टिव हो गए वो बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करते हैं जी। उसमें आपका लंग्स भी आएगा, आपका हार्ट भी आएगा, आई भी आएगा, इसमें मुंह में भी सूखापन, आपके किडनी की इन्वॉल्वमेंट आती है, सारे सिस्टम के। उसी में एक सिस्टम जो है वो है मस्कुलोस्केलेटन, जो अर्थराइटिस, लेकिन मरीज को तो सिर्फ पेन हो रहा है इसलिए आपके पास आ रहा है
0: जी,
1: तो इसलिए वो गठिया समझ के आपके पास आ रहा है। ये आपकी जो सोचने का ढंग था ये 90s में, तो सारे जो अर्थराइटिस के मरीज होते थे वो ऑर्थोपेडिशन, जनरल फिजिशियंस, पैरामेडिक्स, बहुत सारे इस तरह की उसमें चले जाते थे, और ये कंसेप्ट था ये लाइलाज है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। उनको तो अदर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ही पता नहीं कि हार्ट, ये डिजीज़ हुआ तो इसमें हार्ट डिजीज़ जल्दी आएगी, इसमें लंग सिकुड़ने लगेगा। सो ये सारी जो इंटरेस्टिंग ये पार्ट ऑफ मेडिसिन आ गई, तब ये हुआ कि इसको डेवलप किया जाए। तो हमने जब सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म किया उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से, देन हमने बोला कि बाहर चले जाना चाहिए, कुछ नए थॉट्स आने चाहिए, नहीं तो वो डेवलप नहीं कर पाते। तो हम 4-5 साल बाहर रहे, उसके बाद एम्स में फिर फैकल्टी की तरह हमने ज्वाइन किया एंड वी डेवलप ए डिपार्टमेंट कॉल क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। उसमें हमारे 2-3 कलीग और थे, हमने इसको प्रमोट किया। आप कोई भी डिजीज़ लेंगे इसमें इम्यून मैकेनिज्म सबकी है,
0: सबकी है बिल्कुल।
1: अब सिंपल सा आप देख ले मलेरिया
0: जी,
1: मलेरिया में फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मलेरिया का इफेक्ट ऑटो इम्यून के कारण और दूसरे सिस्टम में आने लगता है। टाइफाइड आप ले लीजिए, टाइफाइड में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आके वो आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशन है इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। अब उसको आप रिकॉग्नाइज करनी है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए और हमारे दर्शक को समझाने के लिए रहेगा, कोविड
2: जी।
1: कोविड एक इन्फेक्शन था
2: जी,
1: वायरल इन्फेक्शन, ये हम जानते थे। जब ये वायरस बॉडी में गया वो आपको डैमेज किया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने रिएक्ट किया, वो अपना इम्यून सिस्टम को हाइपर कर दिया। तो जो वायरस था वो आपके बॉडी से 5-7 दिन में बाहर चला गया, लेकिन जो हाइपर रह गया, हाइपर वो इम्यून सिस्टम सेल्स, वो आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगे। जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगी, उसके कारण सांस में तकलीफ आने लगी। ये वायरस तो अपना काम करके इनिशिएट करके चला गया और हमारे को ऑटोइम्यून, तो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाएंगे। स्टार्ट वायरस से हुआ, ड्रग से हुआ, किसी चीज से होगा, लेकिन ये रूमटॉइड भी उसी टाइप से है। लूपस एसएलई, बहुत लोग सफ़र करते हैं एसएलई, स्क्लेरोडर्मा है, मायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, नर्व्स की डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लूपस किडनी की, लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं। अब इसको अप्रोच करने का दो तरीका, या तो जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व है उसके डॉक्टर देखें
2: जी,
1: जो करते रहे वो इजी है। सांस फूल रही है, हम सांस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको क्या पता है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब सांस के डॉक्टर देखते हैं कि सांस के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यून मैकेनिज्म्स मेडिएटर, उसके टेस्ट काफ़ी डेवलप हो गए। अब थोड़ी सी टेस्ट में और भी नई नई चीज़ टेस्ट आती रहती है जो रिफाइंड करते रहते हैं डिजीज़ को, हम उसको क्लासीफाई करना शुरू किया। सो ये आपकी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी वाली बात। अब रूमेटोलॉजी में क्यों इसको जोड़ा गया? रूमेटोलॉजी में मतलब सिंपल सा कि रूमेटिक आपको पेन हो रहा
2: है।
1: तो जितने भी सिस्टम हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या आएगा?
2: जॉइंट्स पेन।
1: तो आपको ये समझना है कि अर्थराइटिस सब एक तरह का नहीं है, 100 से ज़्यादा तरह के अर्थराइटिस होते हैं। अब उसमें कैसे हम कौन अर्थराइटिस है ये पता करने के लिए ये साइंस को डेवलप किया गया
2: जी।
1: अब ये जो डिजीज है इज वेरी कॉमन, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज हमने बोला आपको, हम ऑस्टियो की बात नहीं कर रहे हैं जो एज के साथ है, वो वियर टियर के
2: जी।
1: रूमेटॉइड, अब देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस मानते हैं कि इंडिया में 1% लोग को होता है
2: जी।
1: 1% का मतलब आप देख लीजिए, आपके पास 140 करोड़ है
2: की पॉपुलेशन,
1: तो 1.4 करोड़
2: जी।
1: आप इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। मैं इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन भी रन करता था
2: जी।
1: वहां पर हमने जब रजिस्टर्ड, अब इसकी डीएम एंड सारी स्पेशलिटी शुरू हो गई है। इनफैक्ट हम मेदांता में हम उनको टीचिंग भी करते हैं, इस नॉट ओनली की पेशेंट देखते हैं। सो एवरी ईयर वी टेक 2 डीएम, डीएनबी बोलते हैं, तो हमारे पास एट एनी गिवन टाइम 6 डीएनबी स्टूडेंट जिनको हम ट्रेन कर देते हैं सुपर स्पेशलिटी। हम आपकी फिर रूमेटॉइड पर आके एक बातें और बताते हैं, 1.4 करोड़ कौन देखेगा?
2: बड़ी संख्या है,
1: बहुत बड़ी संख्या, और ये आपको 3 महीने 6 महीने पर देखते रहने का है
2: जी।
1: तो साल में कितनी बार हुआ देख लीजिए, आपके पास जो ट्रेंड रूमेटोलॉजिस्ट एट द मोमेंट इंडिया में है मुश्किल से 3,000 भी नहीं है।
2: तो एक के हिसाब से तो फिर बड़ी संख्या बैठ,
1: समझ ले
2: जी।
1: आप बोलेंगे कि मेरे पास दिखाएं, अब हमारे पास हालांकि हम वेटिंग लिस्ट नहीं रखना चाहते हैं
2: जी,
1: लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत सारे के महीने भर की है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जब आपने इस कोर्स को किया था, इस फील्ड में आप आए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या वजह रही, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप इस फील्ड में आए?
1: मेडिसिन में चैलेंज सभी डॉक्टर चाहते हैं
2: जी।
1: जब मल्टी सिस्टम होता है ना तो चैलेंज बढ़ जाती है
2: जी,
1: और आप एक तरह से एंटीबायोटिक देना वो सब लोग कर लेता है। आपकी इस फील्ड में आने के बाद डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है कि ये इम्यून रिएक्शंस आपके जो लिम्फोसाइट से बी सेल की हाइपर एक्टिविटी से हो रही है। अब हमने दवा बनाया कि बी सेल की हाइपर एक्टिविटी कम कर दें, पहले लोगों का हाथ आपने देखा होगा ऐसे करके चले।
2: जी, बिल्कुल,
1: आप यदि ठीक टाइम पर हमारे पास आएंगे हम गारंटी देते हैं होल लाइफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डैमेज हो गया उसको नहीं, तो ये चैलेंज। अब जब रूमटॉइड हमने देखा, उनके चेस्ट पर हमने स्टेथोस्कोप रखा, उसमें क्रेपिटेशन सारे जो मतलब कि थोड़ी सी लंग्स में सिकुड़न की बात, और ये जो सिकुड़न है जिसमें वो सांस फूल रही है, वो सोच रहे हैं कि दम्बे से चल रही है, नो, ये आपकी गठिया से है। अब इसको हम गठिया ठीक कर देते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस सही कर देते हैं, लंग्स भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और गठिया भी, हार्ट की भी साथ में प्रॉब्लम आए वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है जी मेडिसिन में, वो आपको मोटिवेट करती है।
2: अक्सर डॉक्टर साहब व्यवहारिक रूप से देखा जाए, आम व्यक्ति की हम बात करते हैं, दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द है, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पेन किलर ले लेते हैं, तो उसका कितना खराब प्रभाव बॉडी पे पड़ता है?
1: देखिए, ये हमारी देश की दुर्भाग्यती है कि भाई आपकी ये सब मेडिसिन ना ओवर द काउंटर आप खरीद लेते हैं। मेडिसिन को जो हम अपने टर्म में वेरी सिंपल वे में डिफाइन करें, मेडिसिन को इज ए यूजफुल पॉइजन। तो ये यूजफुल उस समय तक रहेगा जब तक किसी क्लिनिशियन जिसको नॉलेज है वो प्रिस्क्राइब ना। यदि आप जाके उनसे ले लेते हैं जो कॉमन पेन किलर, चलिए आपकी आती है इटरिकॉक्स, निकॉक्सिया एक ब्रांड है, या वॉवरन वेरी कॉमन ब्रांड है, दे कैन किल यू ऑल्सो।
2: अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपने कहा कि ये यूजफुल पॉइजन है। अक्सर एक स्टोरी में पढ़ रहा था, तो उस स्टोरी में ये था कि वन पील टू मैनी उसका टाइटल था। जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि एक एज के बाद शरीर में विभिन्न रोगों में, विभिन्न अंगों में रोग आ जाते हैं, कार्डिक है, लंग्स है, और भी तरह के रोग, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, 60 लगभग सेम होते हैं कई दवाइयों के, तो एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य रोगी को क्या करना चाहिए?
1: ये खास करके डेंजरस होता है एल्डरली पॉपुलेशन में, इसको हम अपने टर्म में बोलते हैं पॉलीफार्मेसी।
2: जी, पॉलीफार्मेसी
1: उसके एक डिफिनीशन है। सो ये जो भी पेशेंट हैं, आपको जो भी मेडिसिन दी जा रही है, आपको एक फिजिशियन के पास रहना है, हु कैन सी द कार्डियोलॉजी में क्या मेडिसिन चल रही है, यदि आपको किडनी की है, डायबिटी, सब वो करके एक मेन प्रिस्क्रिप्शन बनाए। हमारे यहाँ जो है, जो डॉक्टर चाहिए हमारे को फॉर जनरल पॉपुलेशन इज जनरल मेडिसिन वाले, लेकिन हमारे को हार्ड लगता है हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट अपने मेडिसिन के साथ कैल्शियम, विटामिन डी, अदर मल्टी विटामिन, अच्छा यहाँ पर भी दर्द है आप ये भी ले लो, अब वो दर्द वाले दुकान पर गए, इससे क्या हो गया, बहुत सारी बात, ऑल दीज ड्रग जितनी आप नंबर करेंगे इंक्रीज, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी साइड इफेक्ट आती है। इसलिए जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन जनरल फिजिशियन लिखता है, उनको अपनी डिजीज़ जिसके लिए वो गया है साथ में उनको लिखनी चाहिए कि इनको और कौन सी बीमारी है।
2: जी बिल्कुल,
1: अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हम पेन किलर नॉन स्टॉप नहीं दे सकते, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं दे सकते, जिसको किडनी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो कंट्रा इंडिकेटर।
2: क्या आपको लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस है?
1: ये डेवलप हो रही है, लेकिन दो चीज़ें इसमें हैं, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को आगे आना होता है। वेरी सिंपल, आपके पास पेशेंट बहुत हैं, डॉक्टर के पास सो कॉल्ड टाइम नहीं है। अब जैसे मैं देखिए यूके में जब प्रैक्टिस करता था, होल डे में सिर्फ 5 मरीज देखता था, अब यहाँ पर कोई बिलीव तो नहीं करेगा कि 5, फिर आपकी घर कैसे चलेगी, रोटी कैसे आएगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपकी टाइम जो है वो कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे काम हुआ आप कटिंग द कॉर्नर करने लगते हो। अब यहाँ पर जो भी एक कोई अच्छे प्रैक्टिशनर आप देखो, दिन भर में वो 40 मरीज देख रहे हैं कम से कम, उससे भी ज़्यादा देखते हैं।
2: जी,
1: 40 मरीज को 8 घंटे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, उस मरीज पर कितना टाइम आपने दिया।
2: बिल्कुल, उसी सवाल पे मैं अभी आ गया हूँ।
1: तो इसमें क्या है, कि जो एक दोनों साइड में प्रॉब्लम है, पेशेंट साइड में क्या प्रॉब्लम है कि दे गो फॉर द फेमस डॉक्टर। अब सब लोग फेमस डॉक्टर के पास जाएंगे तो भीड़ तो रहेगी ना, वो रात के 2 बजे तक मरीज देख रहा है और वो आपको 2 मिनट दे रहा है। हमको वो डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको वो डॉक्टर चाहिए जो आपकी बात सुन रहा है, 10 मिनट टाइम दिया, उसके बाद वो भी ब्लीम इज कि वो भी आपको ठीक से ट्रीट करेगा। लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश डॉक्टर है वो तो फेमस हो गए, इसलिए गांव से भी लोग आएंगे कि फलना के यहाँ जाने का है, तो वो वहाँ पर रात के 2 बजे का टाइम लेके लगाएंगे। वो बेचारा डॉक्टर सोते हुए, वो भी आई एम नॉट सेइंग कि ही इज डूइंग रॉन्ग, लेकिन उसे लगता है इतने मरीज हैं हम कुछ भी भला कर सकते हैं, हम करें
2: जी,
1: लेकिन टाइम तो कम होता चला गया।
2: इस समय डॉक्टर्स की कमी है, अर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है। और आप जैसा कि आपने बताया कि यूके में 5 मरीज पर डे, पर यहाँ तो लिस्ट वेटिंग बहुत ज़्यादा है,
1: तो इसलिए तो हम यहाँ पर थोड़े से इनोवेट होते हैं। वहाँ पर एक मरीज में सब कुछ करनी होती है, आधा घंटे का टाइम उनको देना होता है, सारा कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मरीज़ की हम उतनी डिटेल में नहीं लिख रहे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं। सेकंड है, वो रिकॉर्ड हम पेशेंट को दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट वो कुछ समय के बाद घर शिफ्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कहीं गया, बाढ़ आ गई, रिकॉर्ड गई, यही प्रॉब्लम है। अब कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हमने आपको जो रिकॉर्ड दिया ओपीडी में उसकी एक कॉपी हमने अपने कंप्यूटर पर, इसको हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाला, वो आपका खाली UHID नंबर रहे, हम उससे निकाल के कि आपके पहले के क्या रहे वो। ये सिस्टम जो है वो कॉर्पोरेट में है, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते।
2: जैसा कि आपने अभी बताया, ये मैं बहुत पहले भी पढ़ा था कि मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटलाइज कर देना, जैसे कॉर्पोरेट में, जैसा आप बता रहे हैं वेदांता में होता है सर ये सब, लेकिन प्राइवेट में और जगह जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंने नहीं देखा है।
1: देखिए, दो सिस्टम है, जो इन पेशेंट है उसके रिकॉर्ड बाय लॉ हमें रखनी होती है, तो इन पेशेंट एडमिट हुए आपके रिकॉर्ड रहेगी उसके, एक 10 साल का है 5, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती पेपर रिकॉर्ड के लिए, डिजिटलाइज कर देने पर आपको बढ़ गया। हम जो बातें कर रहे हैं वो ओपीडी रिकॉर्ड की,
2: जी ओपीडी रिकॉर्ड
1: जो कि आप मेजॉरिटी का आप देखेंगे वो लिख के आते हैं, उस पर 4 चीज़ खाली दवा लिखी हुई है और साइन करके उन्होंने दे दिया, डॉक्टर ने भी नहीं रखा है
2: जी।
1: इमरजेंसी में भी वो मरीज फ़ोन करता है डॉक्टर को, उसे आइडिया नहीं, अनलेस कि वो उनके एरिया का रेगुलर आ रहा हो, क्योंकि वो ट्रेस्ट नहीं कर सकता ना कि हम इसको क्या कर रहे थे। तो ये सिस्टम अब्रॉड बहुत सॉलिड है, वो आप कॉल करेंगे, हमारा हम करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं जो इमरजेंसी में, क्योंकि हमारे मरीज ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है इतने बजे आपको, तब तक हमारा स्टाफ उनका सारा रिकॉर्ड निकाल के हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है।
2: क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स की एक लंबी लाइन है, डॉक्टर के पास समय नहीं है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मेडिकल हिस्ट्री भी डिजिटलाइज हो जाए और एक क्लिक पर पता चल जाए कि पेशेंट का अब क्या हाल है?
1: ये बहुत कुछ शुरू होने जा रहा है कि आपकी जो कार्ड आती है ना, कार्ड में आपको हमने दिया और उसको उसमें अपलोड करके आपको कार्ड पकड़ा दिया
2: जी।
1: हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि आपको हम 80% तो इंडिया को विलेज में नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अमाउंट अभी भी 60 के आसपास है।
2: बिल्कुल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल है।
1: अब वो जब आते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच डॉक्टर की है। आपने जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें 1 मिनट भी आप एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, सेक्रेटरी रख लीजिए, और वो कुछ नहीं आता इनका नंबर और स्कैन करके आप सिस्टम पर डाल लीजिए कम से कम खोल के। गवर्नमेंट ये फोर्स कर रही है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग कि जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो टाइप होना चाहिए। अभी आपने सवाल नहीं पूछा, नहीं तो आप नेक्स्ट पूछने वाले हैं
2: जी, जी, जी।
1: कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो तो कोई पढ़ नहीं पाता,
2: पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो उसमें बहुत मिस्टेक है। अंडर दिस डॉक्टर शुड आल्सो बी नोइंग, दे नो, एवरीबॉडी नोज, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड कि भाई यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग, दिस इज नॉट कि जी आपके गलती से भाई 2000 रुपये नुकसान हुआ, 1,00,000 रुपये नुकसान, दिस इज पेशेंट वी आर टॉकिंग।
2: फिर सबसे बड़ा सवाल तो जीवन का है रुकसा।
1: हाँ, इसलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आ रही है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट,
2: बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हो नहीं रहा है,
1: हो नहीं रहा,
2: वो नहीं हो रहा है।
1: सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया है, सिस्टम, गवर्नमेंट इंडिया इज डूइंग ग्रेट जॉब, वनली थिंग है कि इम्प्लीमेंट करने में, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर का शहर में ज़्यादा है, गांव में कमी, तो उसके बाद हमको लैब स्टैंडर्डाइज करना है, वो सबका इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, NABH करके ना कोई अच्छे लैब को, बिना उसका वो करते नहीं है,
2: नहीं,
1: वो देख के उनकी ऑडिट होती रहती है। सो दीज थिंग्स की अब किसी की हीमोग्लोबिन एक जगह से आपकी सिंपल 11 आई, एक जगह से 5 आ रही है, वो
2: डिफरेंस आता है उसमें,
1: तो अब आपका अब डॉक्टर बेचारा परेशान कि अब किसकी बातें माने क्लिनिकल कितना भी कर ले, लेकिन लैब में दिख रहा है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से हम गठिया पर आते हैं। अक्सर जोड़ों में हल्का सा भी दर्द होता है तो एक लोग सामान्य तौर पे कहते हैं गठिया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसे ही कुछ कहते हैं। फिर कहते हैं कि साहब प्रोटीन बढ़ गया है आपका, अरहर की दाल मत खाइए। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि हल्का सा दर्द होने पर भी क्या गठिया मान लिया जाता है या जोड़ों का दर्द?
1: देखिए, कोई भी जॉइंट्स पेन हुआ, अर्थराइटिस कर लें, दैट्स अ गठिया, वेरी वीक वर्ड में। गठिया बहुत तरह की है, यूरिक एसिड की गठिया इज डिफरेंट, उसमें ये सारी बातें होती हैं, उसको हम गाउट बोलते हैं, वो एक तरह की गठिया हुई सिर्फ, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है उसका। लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड रेज रहने से और थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ गाउट बोले, नहीं
2: जी,
1: वो नहीं होता। यूरिक एसिड आपके नॉर्मल बॉडी में वो आपका बढ़ता है एज के साथ, लेडीज में कम रहेगी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, मेनोपॉज के पहले वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का काम, मेल में थोड़ा ज़्यादा, जो इंटेलिजेंट मेल हैं उसमें यूरिक एसिड थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम यू बोलते आप इंटेलिजेंट हैं 7.6 यूरिक एसिड को भूल जाइए। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रखते हैं, जो मोटे हैं, डायबिटीज़ कार्डी, उसमें यूरिक एसिड वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जनरल बॉडी की कंडीशन इज़ नॉट गुड, किडनी इन्वॉल्वमेंट आने लगी है, यूरिक एसिड ऊपर होने लगा है। तो सिर्फ यूरिक एसिड के बेसिस पर हम गठिया गॉट नहीं बोलते,
2: नहीं कह सकते। सर, आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें।
1: भाई, मैं मुकेश का फैन हूँ
2: सर,
1: ठीक है ना, हमारे टाइम में मुकेश का, उनके सारे गीत अच्छे हैं, लेकिन गीत में एक पूरब पश्चिम का गाना, ठीक है, यदि आपके पास हो
2: जी सर,
1: तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
2: तो हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है पूरा पश्चिम फिल्म का एक गीत,

0: एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो केदार में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, 7 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ रहे। उसमें मैं पढ़ रहा था कि जुवेनाइल टीनेजर्स चिल्ड्रन, जबकि हम लोगों की समझ में अभी तक सामान्य तौर पर यह है कि ये एक एज की बीमारी है, ये एक एज का रोग है। तो क्या बच्चों को भी और जो जुवेनाइल्स हैं उनको भी रोग होता है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दूं कि ये वेबसाइट मैं मेंटेन नहीं करता तो वो कौन किसने बनाया
0: जी।
1: लेकिन ये बात हम सब मीटिंग में बोलते हैं
0: जी।
1: जो अर्थराइटिस और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़, वो किसी एज को अफेक्ट कर सकता है, उसमें जॉइंट्स भी जैसे हमने बताया। तो आपकी जो 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा पैदा लिया, उसके बाद उसको नियोनेटल बोलते हैं, उनको भी अर्थराइटिस हो सकती है। क्या कमी है कि उसको पकड़ना
0: जी, बिल्कुल।
1: यदि आप पकड़ लेते हैं बच्चों में, हम जो जुवेनाइल बोलते हैं कि वो 16 साल के कम बच्चा
0: जी,
1: क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, उनका ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब कुछ वो देख के चलना होता है
0: जी।
1: उनका अर्थराइटिस जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में हम क्लब करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हैं। सो इतनी अब डेवलप हो गई कि इसको पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजी के पास भेजते हैं,
0: बच्चों का जो है,
1: बच्चों का ही वो 16 साल से कम करते हैं। देखिए, अर्थराइटिस को हम डिवाइड करें ना, जो आम धारणा जो आपने बताया कि वो ओल्ड एज में, वो उम्र के साथ वियर टियर के कारण, घिसने के कारण, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं
0: जी।
1: जो कॉमनली आपका घुटने में, बैक में, आपको क्योंकि आपका घुटना आपको 50 साल 60 साल काम किया, रगड़ खरा, मिसयूज आपने किया, जमीन पर पालथी मार के अभी तक बैठ रहे हैं
0: जी।
1: तो उठेंगे तो थोड़ा लगेगा
0: जी।
1: तो ये डिफरेंट है। जो ऑटोइम्यून के कारण है उसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं
0: जी।
1: उसमें क्या है कि जॉइंट्स में अचानक सूजन आ जाती है, आप जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे, हाथ रख के देखेंगे वो गर्म है, जैसे कि जोड़ में आग लगी हुई है, ठीक है। सुबह उठेंगे एकदम जाम हो गया है, थोड़ा चलेंगे चलने लग जाता है। उसकी बहुत तरह की वेरियंट है, उसको पैटर्न देख के हम रिकोगनाइज करते हैं। बच्चों में जो हो हमने क्लासिफाई खाली कर दिया कि जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो यदि किसी को जोड़ों में, एक जोड़ या दो जोड़ बच्चों में सूजन आ गई है, मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करें। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम बच्चे को उसी तरह से नॉर्मल रखेंगे, लेकिन आपको इनिशियल फेज में आना होगा। यदि आप डैमेज हो गया तो फिर तो डैमेज हो गया।
0: आपके पास जब पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, तो किस स्थिति में आते हैं? क्या
1: सभी तरह के आते हैं? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए लोगों को अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो गांव से भी आते हैं वो आपके नाम सुन के आते हैं कि आपने फलना को ठीक कर दिया, आप मेरे को भी कीजिए। वो थोड़ा लेट हो जाता है, जो डिफॉर्मिटी हो गया जॉइंट्स उसमें, लेकिन उसमें भी काफ़ी फ़र्क होगा। ध्यान रखेंगे, हमने खाली अर्थराइटिस नहीं ठीक करनी है, दूसरे सिस्टम को भी ठीक
0: करना है,
1: तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यदि डैमेज हो गया हम 100% बैक नहीं, लेकिन कंट्रोल फिर भी कर लेंगे कि डैमेज का जो प्रोसेस है वो वहाँ रुक जाए और डैमेज ना हो।
0: जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे 7 बातें आपने बताई हैं, जुवेनाइल की मैं बात कर रहा हूँ लगातार और चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कितनी अवेयरनेस है बच्चों को लेकर और किशोरों को लेकर? सब
1: हम आपके स्टूडियो में स्कूल में बैठे हैं
0: जी,
1: हम स्कूल में कैंप लगवाते हैं, उसमें टॉक देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब प्लस मदर एंड फादर, आजकल तो बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, एंड गुड थिंग अबाउट द सोशल मीडिया कि ये सारे चीज़ सबके पास है,
0: सबके पास है।
1: ओनली थिंग ये ओरिएंटेशन अपने बच्चों में देखनी कि यदि वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा रहा, इसका कि चोट लग गया, ये सब नहीं होता। अब देखें, स्कूल जाने से कतरा रहा है, वो यदि घुटने में चल रहा है वो चल नहीं पाएगा, सुबह उठेगा हिल नहीं पाएगा। तो आपका काम है, क्योंकि बच्चे آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے, پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ کو لے کے نزدیک کے سینٹر میں فزیشین کو نہیں ہے, کیونکہ روماٹولوجسٹ کم ہوں گے آپ کے شہر میں, تو آرتھوپیڈیشن وہ گائڈ کر دیں گے کہ بھائی آپ ان کو آگے دکھاؤ مجھے, کیونکہ دوا اس میں تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن دوا سستی بھی ہے مہنگی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ نہیں سوچنے کہ یہ دوا مہنگی ہے, دوا مہنگی کی بتا دیں کہ اس میں کچھ دوا ہم لگاتے ہیں جس کی ایک ڈوز کی قیمت 1,00,000 روپے ہے, اور بہت ساری دوا ہے جس کی 2 روپے ہے, تو ہاں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا پیشنٹس افورڈ کر سکتا ہے یہ, کیونکہ جتنی جتنی نئی دوا آتی جائے گی نا کاسٹ اوپر, پھر جیسے یوز ہوتا ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا, وہ 1,00,000 روپے والی دوا اب آپ کو 30,000 میں ملنے لگی, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم 10,000 میں ملنے لگے, تو یہ سارے ویریڈ ہیں, تو اس کے لیے اسپیشلسٹ لکھیں تبھی اس کو یوز کرنی ہے.
0: ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے کہ جو کمر درد ہے, کمر میں جو درد ہوتا ہے وہ بہت عام ہے, انکیلوزنگ اسپونڈلائٹس والا درد سامانیہ پیٹ درد سے کیسے الگ ہوتا ہے؟
1: ویری گڈ, انکیلوزنگ اسپونڈلائٹس انفلامیٹری آرتھرائٹس ہے, تو اس میں فیچرس جو ہم نے بتایا, صبح اٹھیں گے پورا جام رہے گا
0: جی,
1: ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ موومنٹ کرنے میں دقت ہے, جو کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد نہایا آپ نے تب شروع ہوتا ہے, بیک پین بہت کامن ہے, وہ ارلی مارننگ اسٹیفنیس کم ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ کچھ فیچرس آتے ہیں, یہ ایک سیٹ پیٹرن اب جوائنٹس کو انوالو کرتا ہے, بیک کا آپ نے بتایا وہ بٹک جوائنٹس میں کامنلی ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے گھٹنے وغیرہ میں, اینکل میں, یہ سب میں بھی آتا ہے, وہ آپ کے کامن جوائنٹس میں اینکل میں سوجن نہیں آئے گی. تیسرا ہے اس کی جیسے ہم نے بتایا دوسرے سسٹم میں, کسی کو بار بار آنکھ میں لالی پن آ رہا ہے
0: جی,
1: یہ آٹو میں وہ انکیلوزنگ اسپونڈلائٹس کے, اس کو HLA-B27 سے ہم کورولیٹ کرتے ہیں, اس کے ٹریٹمنٹ آپ آئیں ہم آپ کو 100% کنٹرول رکھیں گے. اس کی جو اندر تھنگ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہ کم ایج میں ہوتا ہے, ایج از نو بار, دھیان رکھیں گے یہ 16 سال 18 سال 20 ینگ بچوں میں ہوتا ہے, اینڈ انکیلوزنگ اسپونڈولائٹس تھوڑی سی فیملی میں رن کرتی ہے, ابھی آپ کے ماما چاچا کو ہے آپ کو ہونے کا تھوڑا چانس ہے. اس میں ایک جین مارکر ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس کو HLA-B27 بولتے ہیں, لیکن یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ HLA-B27 سب کو پازیٹیو ہو اس کا مطلب آرتھرائٹس ہو, یہ ایک دم نہیں ہے. ایک ایگزامپل دے دوں کہ انڈیا میں HLA-B27 پازیٹیوٹی نارمل پاپولیشن عام آدمی میں 6 سے 8% ہے, تو سب کو آرتھرائٹس تو نہیں ہوا,
0: نہیں ہے,
1: لیکن جب بھی آپ کو شک لگ رہا ہے ہمیں دقت ہے, ینگ ایج میں ہوا ہے, کوئی اور ریزن نہیں, آپ ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں, وہ بہت ایزی ہے ایگزامن کر کے, ایکس رے وغیرہ ڈاکٹر کرا کے آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ 100% اویلیبل ہے, آپ نارمل رہیں گے ہول لائف, چھوڑ دیں گے تو اس میں ٹینڈنسی رہتی ہے ہڈی جھٹ جاتی ہے.
0: ڈاکٹر صاحب آپ لمبے سمے سے پریکٹس کر رہے ہیں, تمام پیشنٹ سے آپ ملتے رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ جو پیشنٹ ہیں بیچ میں چھوڑ بھی دیتے ہیں بہت سارے, تو وہ نمبر کتنا اس کا پرسنٹیج ہوگا ڈاکٹر صاحب؟
1: یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی کاؤنسلنگ میں, دیکھو انڈیا آپ کچھ ہی بولیں 5 ٹریلین اکنامی کی طرف چل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ریسورس لمیٹیڈ ہے, آپ کے گاؤں کے مریض پیسے لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہے, اب بہت جگہ آپ کو نارمل اپنے فیملی لائف کے لیڈ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو اس میں جو سب سے زیادہ اگنور ہو جاتا ہے وہ لیڈیز ہو جاتی ہیں, کیونکہ میل کو سب دیکھتے ہیں نا کہ ارن کریں گے, یہ گھر میں بیٹھنے لگے تو کیسے کام چلے گا, تو وہ آپ کو دیکھنی ہے, ان کو انکریج کرنی, ان کی فالو اپ کرنی ہے. ہم اپنے پاس جو اس طرح کے کرٹیکل اور ریئر ڈیزیز والے مریض جو دیکھتے ہیں اس کی لسٹ ہوتی ہے, یعنی وہ فالو اپ اپائنٹمنٹ بھول جاتا ہے اس کو کال کی جاتی ہے, لیکن یہ سبھی لوگ نہیں کر پاتے, تو اس میں آپ کی کاؤنسلنگ جب آپ نے پہلی بار دیکھا ہے اس کو کیسے کیا ہے, اور یہ ڈاکٹر کو ویری امپورٹنٹ ہے कि आपने उसको देखा और महंगी दवा 1,00,000 रुपए वाली दे, कोई जरूरत नहीं है। आप 2 रुपए 6 रुपए 10 रुपए वाली दवा से भी वैसे ही एक्टिवली ट्रीट कर लेंगे। तो ये आपको देख के बहुत से लोग इंडिया में, अब थोड़े लोग रिच हैं, वो आपके इंटरनेट से पढ़ के आते हैं कि मेरे को बायोलॉजिक्स चाहिए, वो महंगा से फर्क नहीं पड़ता आप मेरे, वो ठीक है। तो सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है और सबकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसमें कंप्लायंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम क्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये कंप्लायंस जो आपने मुद्दा उठाया ना, कि कंप्लायंस मतलब कि वो दवा टाइम पर नहीं ले रहे हैं, आना छोड़ दिया, दैट्स द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिसिन तो बहुत सिंपल सी भी हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, वो उतना नहीं। मरीज को, यदि कोई मरीज सुन रहे हो, यदि आपको लगता है फाइनेंस के कारण हम ये ट्रीटमेंट परस्यू नहीं करें, टॉक टू योर डॉक्टर, वो कम कर देंगे, दूसरी दवा दे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप छोड़ देंगे बाद में,
0: जैसे आप तो फॉलोअप कर लेते हैं पेशेंट के साथ की बातचीत हो जाती है कि भाई नहीं आ रहे हो, आप कॉल कर लिया। लेकिन अधिसंख्यक लोग जो है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं, तो वहां तो फॉलोअप भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास आए, पर्चा लिखा, गए, फिर इसके बाद पेशेंट और डॉक्टर का संबंध खत्म।
1: इसलिए राजेश जी, आपके चैनल से हम चाहते हैं कि आप लाइव शो उनसे मेरे को कनेक्ट कराएं। हम करते रहे ऑल इंडिया रेडियो पर, उसमें क्या है, वो कनेक्ट होते हैं, वो सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट की कमी है सब लोग, और जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं बड़े शहर में हैं या 2 टायर सिटी या 3 टायर उसके नीचे नहीं होते हैं। तो उनसे खाली एक बार वो कनेक्ट हो जाए ना, दे विल टेक केयर ऑफ। तो आप जब लाइव शो कराते हैं, आप अपने गांव के लोगों को
0: टेलीमेडिसिन कितना सक्सेस है डॉक्टर साहब,
1: वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, तो आपके, क्योंकि आपका जो माध्यम है ये बहुत लोग को जाएगा। हमारी जो टेलीमेडिसिन है 1-to-1, तो वो जो अपेयर होके मेरे से नहीं आ सकते हैं, तो वी डू वीडियो, दैट्स ए टेलीमेडिसिन हम करते हैं, लेकिन 1-to-1।
0: बिल्कुल,
1: वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान रखें, 1% ऑफ द,
0: दूसरा
1: आपको कैलकुलेशन बता दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड है कि हम आपके माध्यम से और लोगों की तरफ पहुंचे।
0: डॉक्टर साहब, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली और फिर यूके का सिंगरूपुरा, वहाँ की अलग व्यवस्था है, किस तरह से देखते हैं सफर को?
1: बहुत डिफरेंट है। मौलाना आजाद से हमने MD किया, लेकिन हम उसके बाद एम्स में ही थ्रू आउट रहे हैं। हमने एम्स में 1994 में ज्वाइन किया था, सीनियर रेजिडेंसी, पुल ऑफिसर, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि हम 97 में हम यूके चले गए, एंड 2001 में आके हमने फिर एम्स में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। उसके बिफोर हम ज्वाइनिंग मेदांता जब ज्वाइन किया, उसके पहले हम एम्स में थे, वहाँ से छोड़ के इधर हम चले हैं। वहाँ पर ना पेशेंट का लोड नहीं है, पेशेंट आपकी बातें समझते हैं, केयर करते हैं। सेकंड थिंग है कि हेल्थ केयर में एक पिरामिड का जोर होता है, सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता, यू नीड टू हैव ए पैरामेडिक्स, यू नीड टू हैव ए काउंसलर, ये सब वहाँ पर वेल डेवलप्ड है। अब हमारे को फिजियो को भेजने क्या है, वो हम कर दिया, फिजियो घर जाके आपकी एक्सरसाइज कराता है, ये यहाँ पर नहीं हो पाता। यदि आपने फिजियो को रेफर किया तो वो कि ये तो ऐसे ऐसे बताया, नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये लोग ऑर्थोटिस्ट हैं, ये सारे वहाँ पर, प्लस यूके में एवरीथिंग इज अंडर NHS,
0: सो
1: पेशेंट इज नॉट पेइंग एनीथिंग। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में मरीज जाना पसंद नहीं करते हैं, तो प्राइवेट, तो अब कॉस्ट इज ए इशू। तो यदि आप मुझे बोलेंगे कि वहाँ का और यहाँ का एक ही लाइन में मैं बोलता हूँ, मैं जब तक वहाँ था हम उसको बोलते थे वर्किंग हॉलीडे, मैं हॉलीडे पर हूँ, काम भी कर रहा हूँ,
0: काम भी कर रहा हूँ, वर्किंग हॉलीडे।
1: और यहाँ पर जब मैं हूँ मैं घर छोड़ता हूँ 8:30 में, आज शाम को 6:30-7 बजे
0: घर पहुँचते,
1: जबकि हमारी टीम है, उसके बाद हमारी टीम अपनी काम कर रही है, और वो वहाँ पैसा नहीं, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे हमने उसमें सब कुछ कर रहे होते हैं। तो दैट्स ए रिलैक्स एटमॉस्फेयर, बेनिफिट ऑफ दैट सिस्टम, यू स्टार्ट थिंकिंग लैटरली, आप रिसर्च पर चले जाते हैं। यहाँ पेशेंट लोड्स हैं, एम्स मेरा, हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी पब्लिकेशंस हैं
0: जी,
1: वो आपकी है। अब हमारी, चूँकि मैं हमेशा टीचिंग में रहा
0: जी,
1: तो मैं तो, मेरा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, दे आर डूइंग डीएम अंडर मी, डीएनबी।
0: जैसा आपने अपना रूटीन बताया कि सुबह 8:30 बजे से और फिर शाम 7:30 बजे तक, एक लाइफ स्टाइल, क्योंकि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज भी है, क्या एक डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, क्या डॉक्टर भी खुद में उस लाइफ स्टाइल को जी पाते हैं, क्योंकि टेंशन भी बहुत है, बहुत सारा स्ट्रेस है

0: लेकिन एक बार यदि आप इंडिया में चैम्बर में बैठे हैं, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट बाहर खड़े हैं
1: जी स्थिति
0: तो, लेकिन ठीक है, मैनेज हो रही है, आप उसको आदत हो जाती है। अब हमारे यहाँ बहुत फेमस है, मैंने ही फेमस किया है कि मेदांता के डॉक्टर लंच नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं है।
1: तो वही मैं बात करूँ कि क्या खुद फॉलो कर पाते हैं?
0: नहीं, होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैडम का रोज होता है कि अरे 4 बजे खाना खा रहे हो
1: जी,
0: कौन सा तरीका है? चाय पर आप पूरी ओपीडी चल रही है सुबह से 2 बार 3 बार, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है विच बैलेंस कि मरीज आता है आपके इलाज से खुश होके गया, ठीक होके गया, दैट्स योर सेटिस्फैक्शन।
1: लोग कहते हैं कि जैसे बीपी की दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की या गठिया की बात हम करते हैं, कहते हैं कि पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी, क्या ये सही बात है? लोग
0: ब्लड प्रेशर एज के साथ जो होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कर लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं। जो सेकेंडरी एज के साथ होती है वो खाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज, ये सब डेवलप करता रहेगा। तो अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करनी है। अर्थराइटिस डिपेंड करता है किस तरह की अर्थराइटिस है, ट्रीटेबल है, हम नहीं बोलते, हम किसी को नहीं, इवन ओल्ड एज वाले को हम दवा नहीं देते हैं कि ये डिजनरेटिव एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन की आपको हमने डेफिनेशन बता दिया, इज यूजफुल पॉइजन,
1: यूजफुल पॉइजन
0: वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो।
1: अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जो क्योंकि फास्ट रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक वगैरह और बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, एंटीबायोटिक के बारे में मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या है डॉक्टर इसके पीछे?
0: इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे ओवर द काउंटर पेशेंट ही गए, भाई बुखार लगा है थोड़ा सा एंटी, मेजॉरिटी ऑफ दिस फीवर ऑफ वायरल फीवर, वायरल फीवर में बैक्टीरिया वाली मेडिसिन कैसे काम करेगी? वो अपने आप 4-5 दिन में चली जाती, तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बैन है लेकिन वो फॉलो नहीं होता। सेकेंड थिंग ऑल्सो है कि डॉक्टर साइड से बुखार है एंटीबायोटिक नहीं, आपको लिखने की, बाहर के कंट्री में आप एंटीबायोटिक नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ पर क्योंकि आपकी ओवर द काउंटर अवेलेबल है
1: बिल्कुल,
0: वो आप देख लेंगे, एक डॉक्टर ने लिखा 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक इनकी भी खाई, मूव करके कहीं और, उन्होंने हायर एंटीबायोटिक सोक, और हायर का मीनिंग क्या है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने बदल के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी ने यदि डिजीज का नाम नहीं लिखा है, देन हाउ यू कैन राइट एंटीबायोटिक्स? आप पहले आप डायग्नोसिस लिख दीजिए कि आप, वो डायग्नोसिस सही है नहीं है, मोस्ट लाइकली आपकी निमोनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन, आप लिखें चेस्ट एक्सरे, तब ना आप एंटीबायोटिक देंगे। अब जैसे लूज मोशन से, मेजॉरिटी लूज मोशंस आर सेल्फ लिमिटिंग, उसमें क्या करनी होती है, आप इलेक्ट्रोल पाउडर दिया, नॉर्मल फ्लूड मेंटेन रखें, अपने आप वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, खाने पीने में ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन मोर इम्पॉर्टेंट, एंटीबायोटिक सब में लूज मोशन में नहीं दी जाती
1: है। सब तो, चल रहा है
0: ये, बिकॉज आपकी जो सबसे चीप है इज द मेडिसिन। आप यदि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है पानी पियो ठीक हो गया, आप तुरंत चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास, इसने तो दवाई नहीं लिखा है
1: जी,
0: भूल गया दवा लिखना, वो दो मिनट से लिख देगा फिर
1: कि डॉक्टर साहब ने तो पूछा ही नहीं, ढंग से बात ही नहीं की है
0: क्योंकि अब समझने की बात है कि ये क्या है, तो बड़े डॉक्टर के पास जाने पर वो कम मरीज दवा लिखते हैं।
1: एक अच्छे व्यवहार का, डॉक्टर के एक अच्छे व्यवहार का
0: देखिए
1: कितना असर पड़ता है सर पेशेंट पर।
0: प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपने जूनियर कलीग को सिखाते हैं इज इन द ऑर्डर ऑफ ABC।
1: ABC मीन
0: ए स्टैंड फॉर कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, दैट्स एबिलिटी, एबिलिटी इज ए, बी इज बिहेवियर,
1: मोर
0: बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, एंड सी कम्स इज द कॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर। सो इज नॉट द बड़ा डॉक्टर, आई लुक फॉर द सेफ डॉक्टर।

0: सिर्फ डॉक्टर को ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, हमारे को दूसरे कलीग की ओपिनियन ले लेनी है, हम ये दवा नहीं यूज कर सकते हैं, हमारे को ये जबरदस्ती दवा नहीं लिखनी है। ये सब जगह फिट होती है। तो बिहेवियर ये तो एबिलिटी, आप बात सुनोगे आपकी, जब आप बात सुनने लगते हो पेशेंट की, आपकी बिहेवियर, दैट मीन्स यू गॉट ए पेशेंस, यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट। पेशेंट आपको जब तक बोल नहीं रहा, आप लिखना शुरू कर दोगे, फायदा नहीं है।
1: यही बात मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि 9 से 10-11 सेकेंड बाद इंटरप्ट कर देते हैं डॉक्टर पेशेंट को,
0: इसका इस टाइम प्रेशर हमने बताया। मेरे को ओपीडी जब चलती है, मेरे को वॉशरूम तक जाने नहीं देते हैं, अब खत्म करनी है ना। अब हमने वहाँ पर 20 अपॉइंटमेंट्स होल्ड डे कर दिया हुआ है, वो पैर भी लग लग के हमारे को वो 40 हो जाती है। अब कैसे एडजस्ट करें, टाइम तो लिमिटेड है
1: जी।
0: तो उसमें बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ बोलते हैं जो रिलेवेंट नहीं होता। तब उसमें इंटरप्ट के, तो ये जो 9 वाले, हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानते
1: जी,
0: क्योंकि वो फिर वो अपने घर की कहानी सुनाने लगेंगे, तो फिर हमारे को, क्योंकि दूसरों को
1: भी देखना है।
0: यूके में डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि हमारे को उनके फैमिली के बारे में भी जाननी होती है, तो बोलते हैं हम सुनते हैं। यहाँ पर हमारे को टाइम लिमिटेड है,
1: लिमिटेड है,
0: तो अच्छे डॉक्टर पोलाइटली टॉपिक
1: चेंज कर देते हैं,
0: वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन पोलाइट। लेकिन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, फ्रस्ट्रेशन उनके अंडर में भी आती है।
1: चलते चलते डॉक्टर साहब एक करियर से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। जो युवा डॉक्टर आज MBBS या MD के बाद अपना रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में रोमेटोलॉजी की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, क्या स्कोप है और क्या चुनौतियाँ हैं?
0: ये तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया, यू लुक एट वन डिजीज, आपकी कितनी पॉपुलेशन है। डॉक्टर का नंबर भी आपको बता दिया
1: जी।
0: अब सप्लाई डिमांड में तो गैप है, तो अब इसमें तो सवाल ही नहीं होनी चाहिए आपकी, इसमें तो जबरदस्त, क्योंकि अभी मैं बता दूं,
1: स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, स्कोप तो बहुत है डॉक्टर साहब,
0: स्कोप बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले के टाइम में कार्डियोलॉजिस्ट लोग बनना चाहते थे, तो ये पता चलता था कि अभी ट्रेंड क्या चल, जब इनकी DM की एग्जाम जो नीट सुपर स्पेशलाइज, उसमें कि टॉपर कौन सा रैंक में कहाँ जा रहा है। अब रूमेटोलॉजी अच्छे सेंटर में 200 ऑल ओवर इंडिया की 200 के नीचे नहीं जाती, ऊपर चली जाती है, तो डिमांड समझ लें, क्योंकि सीट कम है। तो इसलिए, एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेशलिटी, बिकॉज ये इतनी जल्दी एक्सपेंड होती जा रही है, इतनी नई मेडिसिन आ रही है, इतनी रिसर्च हो रहे हैं, एंड एवरी ईयर इट्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग। तो इसको स्कोप हम तो सबको इनक्रीज, हमने मेडिसिन छोड़ के हमने रूमेटोलॉजी डेवलप की, इतनी नई चीज़ इस्टेब्लिश करनी है। अब कार्डियोलॉजिस्ट नेफर ऑलरेडी लोग काफ़ी हैं, और उसमें भी आधा चीज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि कार्डियो हार्ट में हार्ट वीक क्यों हुआ वो बता सकते हैं, इम्यूनोलॉजी है कि कौन सी बात है।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से, और बहुत सारी जानकारियां सर आपसे मिली, करियर से जुड़ी भी जानकारियां भी मिली, और डॉक्टर्स के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे थे कि हमें लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर का बिहेवियर होना चाहिए, दवाइयों को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अमूल्य जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको इस जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता, तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी थे, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग्स करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया है सर। और सर, अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो उस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी होती है। तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके सिक्स क्लास तक हो गया, देन हमारे सिक्स टू एट क्लास हो गया, देन हमारे नाइन से ट्वेल्व। तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में। देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है।
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रेरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि पोचिंग हुई है और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में। हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू। ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क। सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।
1: जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज करते हैं, दैट इज किर्कपैट्रिक मॉडल। सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं। सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है।
1: ये जानना चाहिए ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में।
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन। उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं। उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स। उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया। उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है।
1: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे, जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे।
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है. उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है. तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्या जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड

0: उत्तराखंड और सहित 5 राज्य है
1: जी,
0: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
1: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कफनौल में। हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का, स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश। तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे। तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहां से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है, बट वहां पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे। तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज का? हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से। सो उन्होंने बोला नहीं हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं। तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे जब हमारा स्कूल बंद है। तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में है।
0: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे। तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
1: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है। तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है, तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाते हैं तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा या तो रास्ता बंद है। तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है। तो ऐसे गेम्स हो गए या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं, तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है। तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की।
0: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो जिसे हम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
1: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है, और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
0: तो ये जो, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं। तो ये आप, ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप, ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
1: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं। जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
0: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या, किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
1: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गया। हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गई, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है।

0: तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में. तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं, प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं.
1: ये अभी तो आप, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की. कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
0: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको, हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए, वो एक टीम बनाई जाती है जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे. तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है.
1: तो ये ट्रेनिंग अभी देते हैं या?
0: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है. जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है. तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए, जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाता है, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है. तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है, ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल.
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
0: जी सर, बिल्कुल आ रहा है. हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर. और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके, उनको ट्रीटमेंट देके, फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है. इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं.
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया. नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं. और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से. आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं. आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं. और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं. सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
0: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं. हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे डब्लू में एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं. तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए. माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं. तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं, नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है. तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे.
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है. और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़.
0: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है. इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए. तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का. तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए.
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।